FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: छह बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके

0: साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। वाचन स्वर विनय ध्यानी का है।
2: आत्मबुद्धि प्रसाद से प्राप्त होने वाला शांति सुखी वो सच्चा ध्येय है, परंतु आध्यात्मिक सुखी यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है, और इसलिए सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर तुमसे न ये कहता है कि कर्म करो, और न ये कहता है कि उनका त्याग कर दो। ये तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है और बंधन मन का धर्म है। इसलिए जो मनुष्य सम्बुद्धि से अथवा सर्वभूतांतरात्मा होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। एकमात्र कर्म ही हमारा मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए। हमारा कर्म निष्काम और पूरी तरह से सोचा समझा हुआ हो। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रभुसत्ता किसे मिलेगी। यही पर्याप्त है कि हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ सर्वोत्तम ढंग से कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यही निष्प्रह धर्म है। जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभ कर्म है, और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो, वही पाप अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य शब्दों का ही अधिक उपयोग करते हैं। आपके धर्म का सिद्धांत है, आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। सब कर्म एक से ही हैं। दोष केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में। इसलिए बुद्धि को कम करके यदि सब कर्म किए जाएं, तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुखमय हैं, अर्थात जन्म मरण के भव चक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिए मन निष्काम और विरक्त करना चाहिए, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहने वाले आत्मस्वरूपी नित्य परम ब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ठ स्थिति में ही सदा निमग्न रहना संन्यास धर्म का मुख्य तत्व है। संसार में कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म फल उतनी शीघ्रता से नहीं मिलता जितनी शीघ्रता से कहा जाता है। हो सकता है इस कर्म फल से लाभान्वित हम हो पाएं या न हो पाएं, परंतु इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य नियम उन सभी श्रेष्ठ बातों का समुच्चय है जो अध्यात्म शास्त्र यथार्थ कर्म और निष्काम उपासना से परिपूर्ण जीवन से प्राप्त होती है। इस सार्वभौमिक नियम के अनुपालन से मानव संप्रेषित आदर्शों की प्राप्ति होती है। कर्मयोग इस संसार को निरर्थक नहीं मानता। कर्मयोग चाहता है कि आपके उद्देश्य स्वार्थपरता और भोग वासना से अछूते हों। यह व्यवहारिक वेदांत का सच्चा दृष्टिकोण और कुंजी है। कर्मयोग और कुछ नहीं वरन धर्म या भौतिक अथवा आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त करने की प्रेरक पद्धति है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्मयोग हमारी पवित्र वंश परंपरा है जो उस अति प्राचीन स्मरणातीत काल से चली आ रही है, जब हम भारतीय यश और समृद्धि के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित थे।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। वाचन स्वर विनय ध्यानी का था। आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर अब प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का।

जो लोग भाग्यवान होते हैं उन्हें जीवन में ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति ही जीवन का सार है। भगवत भक्ति का मूल केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसके भाग्य में भक्ति लिखी हुई है। जब भक्ति में थोड़ा भी मन लगने लगे तब समझ लेना कि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी है।

शब्द के साथ ही श्रोताओं, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस गान।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्रीराम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिनांक 9 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय संबंधी जानकारी।

प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी शीर्षक गीत। कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह के 7:10। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर और शाम 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम के 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह 7:30

रिंगे सुबह के 9:05 पर। एआईआर न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10 बजे, दोपहर 12:10, अपराह्न 3 बजे और शाम 4 बजे। सुबह 10:02 पर प्रस्तुत करेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:12, दोपहर 1:15 और रात 8:30। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर सुनिएगा किशन चंद्र जोशी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रस्तुत करेंगे सुबह के 11 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर सुनिएगा काशवी नेगी के स्वर में भजन। हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत प्रस्तुत करेंगे दोपहर के 12:30 पर। आज के अंक में होगा फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। अपराह्न 3:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने नए तराने। शाम 4 बजे सुनिएगा संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:10 पर प्रस्तुत करेंगे हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज के अंक में होंगे रोजगार समाचार। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों का कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज होगी चिट्ठी पत्री और कुछ लोकगीत।

0: श्रोताओं, ये थी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां

0: उत्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां सङ्घटितानाम् अपराधप्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिताविषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi participated in the India-Australia CEOs Forum in Melbourne this morning and addressed business leaders from both the countries.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
3: Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his 3-nation tour. Centre has approved the procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said this will ensure better price realization for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. The approval is based on the proposals submitted.

कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कस्मे वादे से, गीतकार गुलशन बावरा, संगीत आर डी बर्मन का है।

अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म कल होना हो का ये शीर्षक गीत। बोल हैं जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

0: कहा कि यदि किसी बांध या बैराज से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित हो तो पहले से यह जानकारी दी जाए कि पानी कितने समय में किन किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी और संभावित प्रभाव क्या होंगे, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते लोगों को सतर्क कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें। चमोली जिले में स्थित एनटीपीसी की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाट जलविद्युत परियोजना ने हेड रेस टनल के सफल ब्रेक थ्रू के साथ एक महत्वपूर्ण निर्माण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस ब्रेक थ्रू के लिए फेज टू से 1748 मीटर और फेज थ्री से 981 मीटर सुरंग की खुदाई की गई। इस सफलता के लिए के साथ 12.1 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल में अब तक 9.7 किलोमीटर खुदाई पूर्ण हो चुकी है, जो कुल खुदाई का लगभग 80% है। हेड रेस टनल के इस सफल ब्रेक थ्रू के साथ अब टनल लाइनिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे परियोजना के निर्माण कार्य को और अधिक गति मिलेगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग ने वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हैं। प्रदेश के मूल निवासी पात्र खिलाड़ी और प्रशिक्षक 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। खेल रत्न और हिमालय रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों की कैलेंडर वर्ष 2025 की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। खेल मंत्री ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक की ओर से तैयार किए गए खिलाड़ियों की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित होगा, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए प्रशिक्षक की ओर से तैयार किए गए श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है, बद्रीनाथ में चोरी गौ माता, पिता की हत्या जैसा महापाप। अमर उजाला लिखता है, चढ़ावे की थाली से उठाई थी रकम, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, चढ़ावा हेराफेरी की जांच को एसआईटी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, साक्षरता दर 98.7% पहुंची। सेवा पखवाड़ा के तहत टिहरी और अल्मोड़ा में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज तथा अन्य राज्यों के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया। और राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, पात्र खिलाड़ी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। समय है पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जौनसारी लोकगीत। गायक कलाकार हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट। इनके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर धनदास, बांसुरी पर मुकेश कुमार और हारमोनियम पर अनुज।

0: यार तू तो हर स्कॉलरशिप की खबर पहले ही जान लेता है, आखिर राज क्या है?
1: कोई राज नहीं, मेरी योजना पढ़ता हूँ मैं।
0: अच्छा वो क्या है?
1: धामी सरकार की जनहित पुस्तिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में।
0: मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत, और कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आए हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह बिष्ट के स्वर में जौनसारी लोकगीत। इनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर धनदास, बांसुरी पर मुकेश कुमार और हारमोनियम पर अनुज। FM 100.5 MHz पर ये है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
4: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
4: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
5: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान

0: कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद एमआईएस के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी तानुपुंडी। श्रोताओं, कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर दौर में नई रोशनी बिखेरते हैं। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त एक ऐसे ही शख्स हैं। 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उन्होंने हिंदी सिनेमा को प्यासा, कागज के फूल, आर पार, चौदहवीं का चांद और साहेब बीबी और गुलाम जैसे कालजयी फिल्में दी। उनकी फिल्में में न सिर्फ कहानी नहीं होती थी, बल्कि समाज की सच्चाई, इंसानी रिश्तों की गहराई और अधूरे सपनों की कसक भी दिखाई देती थी। महज 39 साल की उम्र में साल 1964 में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी कला, उनकी सोच और उनकी फिल्में उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेंगी। महान कलाकार गुरुदत्त की जयंती पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है गुरुदत्त की ही फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाकर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोतो इस ब्रेक के बाद कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आपका पुनः स्वागत। श्रोतो आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे वर्षा जल संचयन के कैच द रेन अभियान पर पर्यावरणविद जगदीश बाबला से बातचीत। गढ़वाली फिल्म मार्छा के क्रिएटिव डायरेक्टर धीरज वर्मा और सह अभिनेत्री अंशिका शर्मा से होगी बात, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। UPCL को 1320 मेगावाट बिजली खरीद की मंजूरी मिली। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी में 5 दिन से थमे हैं बड़े वाहन। हवाला मामले में दून ऋषिकेश और दिल्ली में ईडी के छापे। डार्क वेव के रूट पर पेट्रोलिंग करेंगे साइबर कमांडो। दून पुलिस में फेरबदल, 33 इंस्पेक्टर व दरोगा बदले। 11 से 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड में लगेगा 5 दिवसीय उत्तरीय क्षेत्रीय लोक संवर्धन पर्व। देशभर से अल्पसंख्यक कारीगर दिखाएंगे हुनर। खिलाड़ियों को खेल रत्न, प्रशिक्षक को मिलेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल विभाग ने 24 जुलाई तक मांगे आवेदन। खेल संघ की संस्तुति व प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य। बाल श्रम पर सख्ती, 486 छापों में 40 बच्चों का रेस्क्यू। 16 को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्य मार्गों से होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर किताबघर में होगा समापन। अब खबर मौसम से। प्रदेश में आज से 3 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून और हरिद्वार में आज स्कूल रहेंगे बंद। तो श्रोताओं ये तो थे आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। और आपको बता देंगे श्रोताओं आज भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता संजीव कुमार की जयंती भी है, जिन्हें अपनी सशक्त अभिनय शैली के लिए याद किया जाता है। उन्होंने शोले, कोशिश, आंधी, अंगूर, खिलौना और सीता और गीता जैसे फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई थी। उनकी खासियत थी कि वो हर उम्र हर तरह के किरदार को गहराई और सहजता से जीते थे। तो श्रोताओं उनकी जयंती पर आज संजीव कुमार को फिर याद करते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाकर।
2: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वर्षा जल को संरक्षित कर उसका सदुपयोग किया जा सके। तो चलिए, इस अभियान को लेकर पर्यावरणविद जगदीश बाबला क्या सोचते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आपका।
2: ये जो समस्या है कि वर्षा जल संग्रहण करने की, ये तो बहुत पहले से चली आई है। और साउथ में आप आंध्र प्रदेश जाओ, आप या आसाम के साइड में जाओ, या आप मद्रास के साइड में जाओ, चेन्नई वगैरह साइड में, तो वहाँ ये बहुत पहले से चल रहा है
1: जी।
2: और यहाँ भी चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ लोगों ने शुरुआत तो करी कुछ शुरू में, लेकिन जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो न मिलने की वजह से, अब जैसे नक्शे पास होते हैं, अगर MDDA उसी में ये कर दे कि साहब आपका अगर जो है वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो आपका नक्शा पास नहीं होगा, तो सब लोग अपना आराम से लगाएंगे उसको। और उसमें करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ ऊपर दो पाइप लगाने हैं आपको, और उससे एक पाइप नीचे ड्रेन पाइप लगाना है जो कि नीचे उसको करेगा, फिर जमीन के अंदर आपको जो है वहाँ उसको टाइल से बंद ना करके खुला छोड़ दीजिए, वो पानी जमीन के अंदर चला जाए
1: जी।
2: पहले देहरादून में आधे घंटे बरसात होती थी, तो बरसात होने के बाद पूरे शहर में थोड़ा सा मौसम का टेम्परेचर डाउन हो जाता था, क्यों कि पानी जो आता था सड़क से बह करके, सड़क का जो बनावट थी वो स्लोप में होती थी, पानी आता था दोनों साइड में आता था, दोनों साइड में कच्ची वो होती थी मिट्टी या ईंट होती थी, तो पानी उसके द्वारा जमीन के अंदर रिसता था, जमीन के अंदर जब पानी जाता था तो नीचे कुछ ना कुछ, जब पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो नमी होगी होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर घटेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि सड़क बनती है और सड़क के किनारे दोनों साइड में हम लोग टाइल से उसको कवर कर देते हैं, और टाइल में भी कहीं गुंजाइश नहीं होती पानी जाने की, तो वो पानी पूरा जमीन के अंदर जाने के बजाय पूरा का पूरा बह जाता है। अब हम तो जैसे बच्चों में स्कूल में बुलाते हैं मुझे बच्चों, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा मजाक में भी कहता हूँ कि बेटे देहरादून का सारा पानी बह करके सहारनपुर चला जाता, कहने का मतलब कि वो जो पानी यहाँ बरसा ऊपर वाले ने उस पानी को बरसाया देहरादून के लिए, तो वो देहरादून की जमीन के काम नहीं आ रहा है, वो बह करके आगे चला जाता है, तो इस तरह से वो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है, और जमीन के अंदर जाने की वजह से बारिश होती है, आधे पौन घंटे बाद आप देखेंगे फिर आपको उमस नजर आएगी। अगर वो पानी जमीन के अंदर जाता तो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को, अगर सरकार चाहती है कि इस तरह का काम हो, तो उसके लिए जैसे MDDA जैसे विभाग हैं, विकास विभाग है, उनको चाहिए कि नक्शा पास करने से पहले ही इस टाइप का सिस्टम हो कि अगर वो सिस्टम आपके यहाँ लग रहा है तो नक्शा पास होगा वरना नहीं होगा, है ना। तो उसमें ये कि पानी आए, पानी छत पे बरसे, और छत से वो पानी पूरा का पुराना पाइप के रास्ते जमीन के अंदर चला जाएगा।
1: बिल्कुल, आपने कई सालों इस क्षेत्र में काम किया है, तो वर्षा जल संरक्षण किस तरह से एक आम आदमी भी कर सकता है?
2: इसमें ऐसा नहीं कि हर आदमी को, जब तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको ये बताया जाए कि अगर आपके घर में वर्षा जल को संग्रहण करने का सिस्टम लगा हुआ है तो आपको जो पानी जो आपको मिलता है उसमें आपको 10%, 20%, 30% की रिबेट मिलेगी, या आपका जो हाउस टैक्स है, अगर आपके यहाँ जल संरक्षण सिस्टम लगा हुआ है तो आपको जो हाउस टैक्स है उसमें 10%, 20% की छूट मिलेगी, तो लोग उस 10%, 20% छूट की वजह से ये सिस्टम लगाएंगे, और सरकार का काम भी होता है, पब्लिक का काम भी हो रहा है, और एनवायरमेंट के लिए भी काम हो रहा है। दूसरी बात कि घर के आगे कभी भी जितने भी जो सड़क बनती है उस सड़कों के किनारे जगह कच्ची छोड़ी जाए, बेशक उसमें ईंट लगा दीजिए, और ईंट लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ ऐसी जगह छोड़ दिया जिसमें कि आप पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। तो जो कि पुराना सिस्टम है हमारा, कि जहाँ भी सड़कें हैं, जहाँ भी मार्ग हमारे पुराने, हर सड़क के किनारे आपको पेड़ मिलेंगे, तो आप पेड़ ना भी लगाएं, कम से कम थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 5 मीटर पे, 10 मीटर पे आप थोड़ा सा वहाँ पर जगह खाली छोड़ दें जिसमें कि वो पानी जाकर कम से कम उसके रास्ते जमीन के अंदर तो जाए। जब पानी जमीन के अंदर जाएगा ही नहीं तो वो सिस्टम जो आप करना चाह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है उसका, क्योंकि आज की तिथि में आम जन के पास सिर्फ घर रहने की जगह है, उसके बाद खाली जमीन नहीं है, पहले होती थी। अच्छा, फिर जब समाज में रहते थे तो समाज में बहुत सारा स्थान खाली होता था, तो वहाँ वर्षा जल इकट्ठा होता था, जानवर जाके उस पानी को पीते थे, जानवर जाके उस पानी में लेटे रहते थे गर्मियों के दिनों में देखिए, लेकिन अब सारे तालाब सूख गए, क्योंकि जमीन की जिसको जितना पानी चाहिए उतना पानी भूमि को नहीं मिल रहा है, तो जितना थोड़ा बहुत होता है वो अपना सोख लेती है, बाकी वो फिर सूखी के सूखी रहती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जमीन तो आदमी पे है ही नहीं, लेकिन जहाँ जमीन खाली है वहाँ, जैसे अब मैंने हिमाचल प्रदेश में देखा, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन में थोड़ा गहरा करके और पॉलीथीन लगाते रहते हैं, और उस पॉलीथीन में पानी को इकट्ठा करते हैं, तो जब तक उनका मन करे वो पानी इकट्ठा करते रहो, उसमें मच्छी पालो, मच्छी पालन करो, कुछ भी करो, अपना वो काम किया, जब आपका मूड नहीं हो रहा, आपका बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा, उस पानी को उठा के फेंक दो, आप अपना खेती करना शुरू, तो इस टाइप का सिस्टम कर सकता है, लेकिन उस सिस्टम के लिए जगह नहीं है लोगों पर।
1: बिल्कुल, तो सर इतने सालों आपने भी जल संचय का कार्य किया था, तो थोड़ा उस बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने लोगों को जागरूक किया जल संचय के लिए।
2: मैंने 1996 में देहरादून से लेकर के और देवप्रयाग तक, 1997 में देहरादून से लेकर के हिंडोला खाल तक, और फिर 2001 में देहरादून से लेकर के आपके देवप्रयाग तक एक जन जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। और विशेष करके हम लोगों जब गांव में गए तो स्कूलों में बच्चों को हमने जल संरक्षण के बारे में बताया कि पानी आपको किस तरह से संरक्षण करना चाहिए, इस पानी की कीमत क्या है। दूसरी बात, के रास्ते में जितने भी हमको पानी के टैंक मिले, उन टैंकों के हमने देखा कि सालों से उसकी कभी सफाई नहीं हुई, तो हम लोग उन पानी की टंकियों को साफ करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1974 से हम लोग लगातार वृक्षारोपण करते चले आ रहे हैं, और उस समय समझता कि हमने, अगर जैसे मैं 6 लाख पेड़ लगा चुका हूँ 74 से लेकर आज तक, तो मैं समझता हूँ उससे जो पेड़ लगाने से कुछ ना कुछ, क्योंकि जब पेड़ होंगे पेड़ों से भाप निकलेगी, फिर बादल बनेंगे, बादल बने वही तो बरसेंगे, तो कैच द रेन तो कर रही है, तो मैं समझता हूँ पब्लिक को कैच करे सरकार, अगर पब्लिक से संपर्क बढ़ाएगी सरकार, उनसे बातचीत करेगी, तो अगर वो उनको कैच कर लिया सरकार ने आम आदमी को, तो ये सारी समस्याएं अपने आप दुरुस्त होती हैं।
1: बिल्कुल। तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे समय दिया।
0: श्रोतो, आप उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के इस गीत की ओर।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गढ़वाली फिल्म मार्चा के क्रिएटिव डायरेक्टर धीरज वर्मा से और जानते हैं इस फिल्म के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में। तो धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: धीरज जी जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये मार्चा फिल्म है और किस तरह का संदेश ये पूरी जनता को देती है।
1: आजकल पहाड़ों में

0: फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं कि हमारा हीरो जो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर इंजीनियर है, उसने करोड़ों की नौकरी छोड़ के और अपने गांव में भेड़ बकरी चराते हुए और यहां भूमाफियाओं को रोकता है, सबकी जमीनें बचाता है और बहुत अच्छा उसने कोशिश किया है पलायन रोकने का। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम इस फिल्म के माध्यम से पलायन को हम रोकें।
1: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति को भी जागृत करता है कि अपने उत्तराखंड में रहकर हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं बाहर विदेशों में जाने से बेहतर।
0: बिल्कुल, हमारी जन्मभूमि है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, तो हम बाहर विदेशों में क्यों जाएं? वहां जाने के बाद हमें जब इच्छा होती है, हमारे घर में कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लोग इंतजार करते रह जाते हैं, हम नहीं आ पाते।
1: बिल्कुल,
0: या कोई पर्व होता है तो उसमें हमारे माँ बाप इंतजार करते हैं लेकिन हमें छुट्टियां नहीं मिलती है। तो मैं इसको रोकने के लिए इस फिल्म के माध्यम से जन जन तक अपील कर रहा हूँ कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखें, और हमारे फिल्म के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बाहर न जाएं, अपने उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को आगे बढ़ाइए, ये मेरा प्रयास है।
1: कहाँ कहाँ इसके सीन्स शूट हुए हैं और सॉन्ग्स के बारे में थोड़ा सा कि कहाँ शूट हुआ है?
0: इसके शूट्स हमने चकराता में किया, नगाँव में किया, हमने फिर शूट किया वहाँ टाइगर फॉल किया, देहरादून किया, तो हमने पूरे उत्तराखंड में पूरी फिल्म की शूटिंग की है। और लोकेशन इतना प्यारा है कि जो लोकेशन में हम वहाँ लाखों करोड़ों बॉम्बे में खर्च करते हैं और यहाँ सब कुछ कुदरती है। इसमें हमने थोड़ा सा पब्लिक के हिसाब से हमने थोड़ा सा संगीत को बनाया है। इसमें एक तो हमने थोड़ा लव एंगल भी पकड़ा है कि थोड़ा मनोरंजन भी हो, तो लव ट्रैक है हीरो हमारे हीरो हीरोइन का जो मार्शा बना हुआ है, और एक हमने प्रमोशनल सॉन्ग भी उत्तराखंड के बारे में टाइटल सॉन्ग है जो हीरो के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड की तारीफ करते हैं। और लास्ट में एक हमारी जीत होती है, एक सॉन्ग हमारा जो एंडिंग सॉन्ग है वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है, वो भी बहुत, आप फिल्म देखेंगी तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा।
1: और हमारे तमाम जनता है जो इस फिल्म को नहीं देख पाई है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए?
0: मैं एक बार तह दिल से गुजारिश करता हूँ पूरे उत्तराखंड के जनता को कि प्लीज हम बॉम्बे से आए हैं आपके लिए, हमारी फिल्म को देखने आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए और जितना ज्यादा आप आएंगे हमें खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हमारे बीच गढ़वाली फिल्म मार्छा की को एक्टर अंशिका शर्मा भी मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि इस फिल्म में उन्हें अभिनय करके कैसा अनुभव हो रहा है। तो अंशिका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म का हिस्सा बनके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसको लोग कितना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, लाइक हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमारा काम पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: अभी तक जितनी गढ़वाली फिल्म आपने की है तो उसमें सबसे ज्यादा रोल आपका इस फिल्म में है?
2: जी, अभी तक तो मैं केवल या तो सेंट्रल कैरेक्टर रहती थी या फिर हीरो की बहन बन जाती थी, लेकिन इसमें भी मैं सेकंड लीड में ही हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है उसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है कहानी के अंदर, पूरी कहानी को एक तरह से बांधे रखता है जो मेरा कैरेक्टर है काव्या, और बहुत ही उम्दा तरीके से जो मेरे को एक्टर्स हैं कामिनी और अर्जुन, उन दोनों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, हम तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है अपने अपने कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने में।
1: बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपका जो किरदार है वो बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप एक लीड रोल का किरदार निभाएंगी।
2: मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी अब लीड कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीड करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कैरेक्टर पकड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका कैरेक्टर जो है वो कहानी के इर्द गिर्द कितना ज़्यादा चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है।
1: अच्छा, दर्शकों की अगर बात करें तो दर्शकों का रिस्पांस किस तरह का रहा है?
2: दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है दर्शकों का हमको, और सबसे अच्छी बात वही लगती है कि जब दर्शक आके हमको देखते हैं, वो पहले एक बार स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, फिर हमारी तरफ देखते हैं और ऐसे कंफ्यूजिंग सा फेस बना के बोलते हैं अरे तुम तो काव्या हो ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर जब लोग आके अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं कि अरे तुमने तो हमें बहुत इमोशनल कर दिया, बहुत अच्छा एक्टिंग की है, बहुत अच्छा लगता है, दिल से ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं।
1: अच्छा, कोई एक डायलॉग जो आपको इस फिल्म में सबसे अच्छा लगता हो और आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहती हूँ?
2: यार मैं सोचना छा, कितका सुंदर जगह छे ना, इतगा औषधि युक्त पेड़ पौधा, सुंदर सी क्लाइमेट, पंचप्रयाग क्या नीच यख है, हर मेरी दगड़िया थे तो बस एक ही चीज ने जरौनी छे, लक्ष्य लक्ष्य अरे लक्ष्य, और कुछ है जे सोचना को।
3: बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करती हूँ अंशिका भविष्य

0: मूवीज आपको करने को मिलते रहे और आप हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आप भी गढ़वाली फिल्म मार्छा देखने ज़रूर जाएंगे। तो आज कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

तो श्रोताओ, आज बस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार देहरादून।

0: कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए आरएनयू देहरादून की विशेष प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयवीर। आज की इस चिट्ठी में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तरकाशी के जिले की ओर, जहां जानेंगे वहां के विकास कार्यों, संस्कृति, पर्यटन, जनजीवन, उपलब्धियों और उन प्रयासों के बारे में जो इस जिले को एक नई पहचान दे रहे हैं। आलेख है आशीष मिश्रा का। तो आइए शुरू करते हैं आज के जिले की चिट्ठी। रवाई घाटी के आराध्य रुद्रेश्वर महादेव वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तिया गांव स्थित प्राचीन मंदिर के गर्भगृह से बाहर विराजमान हुए। देवमूर्ति का दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के बाद उन्हें पारंपरिक देव डोली में विराजमान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में तांदी नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। भटवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने इस वर्ष पल्स पोलियो अभियान के तहत एक नई पहल करते हुए पहली बार भारत चीन सीमा के नेलांग और जादुंग क्षेत्र तक बच्चों को पोलियो की खुराक पहुंचाई। गंगोत्री धाम और हीना पंजीकरण केंद्र पर विशेष पोलियो बूथ स्थापित किए गए, जिससे यात्रा के दौरान आने वाले बच्चों को भी टीकाकरण का लाभ मिला। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों के बच्चे भी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से जुड़ सके। भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम ने उत्तरकाशी पहुंचकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि जिले में मतदाता सूची का लगभग 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है और अब 214 मतदान केंद्रों पर यह कार्य 100% पूर्ण हो गया है। आयोग के निर्देश पर कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसकी सलाह दी गई तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए। रवाई घाटी के प्रसिद्ध डांडा देवराना मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन किए। ढोल दमाऊं और रणसिंघी की धुनों के बीच निकली देवडोली के साथ श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तांदी नृत्य किया। दूर

0: दराज के गांव सहित जौनसार और टिहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति का यह अद्भुत संगम क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत पहचान है। मुख्य विकास अधिकारी जय भारत ने तिया गांव में स्वयं सहायता समूह की साबुन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना और रीप परियोजना के सहयोग से संचालित इस इकाई से ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों ने सेब मिशन और स्थानीय उत्पादों के विपणन का भी निरीक्षण किया तथा किसानों और स्वयं सहायता समूहों को आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त स्वच्छता अभियान चलाया। स्नान घाटों, मंदिर परिसर और यमुना तट से प्लास्टिक, कूड़े और अन्य अपशिष्ट हटाकर उनका सुरक्षित निस्तारण किया। साथ ही श्रद्धालुओं से पर्यावरण संरक्षण और धाम की स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। उत्तरकाशी में जिला स्तरीय सेवा पखवाड़ा माफ कीजिए उत्तरकाशी जिले में जिला स्तरीय सेवा पखवाड़े का शुभारंभ जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां लगाई गई और लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाना और लाभार्थियों को योजना से जोड़ना रहा। आपदा प्रभावित धराली गांव के परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है। भूवैज्ञानिकों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लगभग 60% परिवारों के लिए सुरक्षित भूमि का चिन्हीकरण किया। प्रशासन का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित कर उन्हें बेहतर जीवन और भविष्य उपलब्ध कराना है। यह पहल आपदा प्रबंधन पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी आज के जिले की चिट्ठी जिसमें हमने आपको उत्तरकाशी जिले की विशेषताओं, विकास की नई पहल, सांस्कृतिक विरासत और जनजीवन से परिचित कराने का प्रयास किया। आशा है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे उत्तराखंड के किसी अन्य जिले की चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी जयवीर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की विशेष प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आज की इस महफिल की शुरुआत हुई है मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में उस गीत के साथ जिसमें श्रद्धा थी, विश्वास था, सुकून था। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम है सदाबहार गीतों का और ऐसे गीतों का ना अपना ही एक अलग अदब होता है। इसी अदब को सलाम करते हुए अब सुनते हैं आज की महफिल का ये अगला नगमा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में फिल्म आशा से। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल से ये गीत आप सभी सुन रहे थे। बोल थे राजेंद्र कृष्णन के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, मौसम ने ना करवट ले ली है, मॉनसून दस्तक दे चुका है, बादलों ने आसमान को अपनी बाहों में भर लिया है, तो क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत भी इसी सुहाने एहसास के नाम हो। आइए अब सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके का ये बेहद ही प्यारा गीत, जिसे अपनी मधुर आवाज से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। संगीत SD बर्मन का है।

मौसम को देखते हुए ही कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में फिल्म नमक हलाल से। गीत को बोल दिए हैं अनजान ने और संगीत बप्पी लाहरी का है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में ये गीत आप तक पहुंचा फिल्म ब्रह्मचारी से। बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का था। कहते हैं कि हर शायर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है। कुछ कहानियां मुकम्मल होकर किताब बन जाती हैं और कुछ अधूरी रहकर गीत में ढल जाती हैं। अगला नगमा भी एक ऐसे ही दिल की आवाज़ है जहां दर्द शिकायत नहीं करता बल्कि वो एक खूबसूरत सी धुन में ढल जाता है। आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में फिल्म कर्ज से ये अगला गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अब सुनिए फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

यादें जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, मगर ये जिंदगी सिर्फ यादों में ठहर जाने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का भी नाम है। गुजरा हुआ कल हमारी कहानी हो सकता है, लेकिन आने वाला कल हमारी उम्मीद है। तो आज की इस महफिल का आखिरी नगमा उसी उम्मीद, उसी मुस्कान और उसी हौसले के नाम। मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा छित्तर और साथियों के स्वर में फिल्म शोर से सुनिए ये कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिर मिलेंगे श्रोताओं कुछ और सदाबहार नगमों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सच ही है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने आरोपित के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी की। उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। विद्युत नियामक आयोग ने 1320 मेगावाट थर्मल पावर को मंजूरी दी। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 और पैकेज 3 के लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट का सफल परीक्षण किया। राज्य सरकार ने 2025 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए प्रदेश के मूल निवासी पात्र खिलाड़ियों प्रशिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत लैब एक्सरे टेक्नीशियनों और डेंटल हाइजीनिस्ट के को समान वेतनमान देने के आदेश दिए। कोयला मंत्रालय ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऋषिकेश एम्स में उत्तराखंड वासियों के लिए अलग से OPD पंजीकरण काउंटर खुला और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. Balanced diet महत्वपूर्ण रूप निभाती है, इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किन फूड्स में फाइबर पाया जाता है और इनमें क्या शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर डाइट के साथ आपको बाकी पोषण तत्वों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से आप फाइबर फूड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिया बीन्स में डाइटरी फाइबर होता है, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। चिया बीन्स पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चिया बीन्स का सेवन करने से शरीर में अच्छा फैटी एसिड आता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सामान्य बना रहता है। एवोकाडो फ्रूट में भी डाइटरी फाइबर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सेहतमंद फैट से भरपूर होता है, जो वजन सामान्य और दिल सेहतमंद रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन के और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। यह शरीर में फ्री रेडिकल के द्वारा किए जाने वाले नुकसान होने से रोकते हैं। हाई फाइबर फूड लिस्ट में जुड़ी

0: अधिक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में।
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।
0: राजमा और फलियां डाइट्री फाइबर से भरपूर होती है। इनमें प्रोटीन भी भारी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम राजमा में आपको 6 ग्राम फाइबर मिलता है और पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि राजमा एक अच्छा ऑप्शन है। राजमा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मांसपेशियों का विकास और फैट बर्न एक साथ हो जाता है। छोले में हाई फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। राजमा के मुकाबले छोले में ज़्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम छोले में 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फलियां प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं और उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। बादाम में फाइबर के साथ साथ कई सारे पोषण और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जैसे कि विटामिन ई, मैंगनीज और मैग्नीशियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और दिल की सेहत सुधारने के लिए बादाम को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्रोकली अधिकतर हरी सब्जियों में सही मात्रा में डाइट्री फाइबर पाया जाता है और साथ ही विटामिन ई भी पाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली को हाई एकॉर्बोनिक नाइट्रेट के लिए जाना जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कसरत अच्छे से करने में मदद करता है। क्वीनवा डाइट्री फाइबर मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है। जो लोग ग्लूटेन फ्री फूड खाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्वीनवा में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। काले सेम एक तरह की फली है, जिनमें डाइट्री फाइबर भारी मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर के साथ साथ मिनरल जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को तोड़ने का काम करता है, जिससे हड्डियों में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का बहाव बना रहता है और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। सोयाबीन में प्रोटीन और सामान्य स्तर पर फाइबर पाया जाता है, जिसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार कई तरह से बना सकते हैं। सोयाबीन के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोया का आटा, टोफू, सोया दूध, सोयाबीन का तेल आदि। इन सभी प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खाने के पौष्टिक आहार और फाइबर बढ़ा सकते हैं। आर्टिचोक में आर्टीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है। एक मीडियम आर्टिचोक में 7 ग्राम डाइट्री फाइबर पाया जाता है। कद्दू में फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम। सामान्य रूप से कद्दू खाने से आपको पूरे दिन का 10% फाइबर मिलता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सब्जी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में अवश्य मदद करती है। एक सेब खाने से पूरे दिन का 16% फाइबर मिलता है, जिससे आप बेशक डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। सेब खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है और वजन कम होने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सेब में विटामिन सी और विटामिन ए भी मौजूद होते हैं, जिससे ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाकर रखता है। हाई फाइबर चाट में केले को भी शामिल करना ज़रूरी है। एक मीडियम साइज केले में 9% फाइबर होता है, जो आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी है। इसके अलावा केले में पोटेशियम भी होता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। पोटेशियम शरीर में ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के आसार को कम करने में मदद करते हैं। जब आप कुछ सेहतमंद खाने को ढूंढ रहे हैं, तो खट्टे फलों को बिल्कुल न भूलें। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। एक संतरा खाने से आपको पूरे दिन में 10% फाइबर प्राप्त होता है।
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039।

0: 515-222-7039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।
1: कुट्टू का आटा, क्विनोवा की तरह कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री अनाज है जिसमें डाइट्री फाइबर होता है जो सेहतमंद लाइफस्टाइल देता है। 100 ग्राम कुट्टू का आटा खाने से आपको पूरे दिन का 25% फाइबर प्राप्त होता है। ये मांसपेशियों के विकास के लिए भी जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म और फैट बर्न करने की बात हो तो हाई फाइबर डाइट का होना जरूरी है। फाइबर का सेवन से नियमित रूप से करना चाहिए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। फाइबर पचने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में फाइबर खाने से वजन बढ़ भी सकता है। फाइबर अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ कसरत रोजाना करना शुरू कर दे। अगर आप फाइबर से भरपूर डाइट के फायदे जानने लगे तो आप सेहतमंद रहने की राह पर आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, अधिकतम बीमारी पेट से शुरू होती है। फाइबर का सेवन नियमित रूप से करने से पेट स्वस्थ रहता है, जिससे अधिकतर बीमारी से दूर रहते हैं। इसीलिए फाइबर के साथ सभी पौष्टिक तत्व डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515-222-7039। आई रिपीट, 09515-222-7039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सुनिधि चौहान और सोनू निगम के युगल स्वर में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी फना। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत जिसे अपनी आवाज़ दी है बेनी दयाल ने, और ये गीत लिया गया है फिल्म जाने तू या जाने ना से।

फिल्म संगीत में आइए, अब सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया है हाले दिल फिल्म से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और पामिला जैन ने। बोल समीर के हैं और संगीत विशाल भारद्वाज का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुन रहे हैं के और अनु मलिक की आवाज़ में, फिल्म हमको दीवाना कर गई से। गीत और संगीत अनु मलिक का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास के नेतृत्व में आयोग की टीम ने भेंट की। इस दौरान टीम ने उत्तराखंड के समग्र और सतत विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने टीम से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसांख्यिकीय चुनौतियों व विकास की संभावनाओं के अनुरूप प्रभावी एवं दूरदर्शी नीति निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में नीति आयोग का सदैव सकारात्मक सहयोग मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का मार्गदर्शन व सहयोग मिलता रहेगा। ऋषिकेश स्थित एम्स में उत्तराखंड के स्थानीय रोगियों के लिए अलग से ओपीडी पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिया गया है। काउंटर पर राज्यवासियों को पंजीकरण और बिलिंग सुविधा में प्राथमिकता दी जाएगी। संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि काउंटर पर उत्तराखंड के स्थानीय रोगियों को रोगी पंजीकरण संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी। वहीं विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि एम्स में लगातार बढ़ रहे मरीजों से स्थानीय रोगियों को पंजीकरण कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एम्स प्रशासन से समस्या के समाधान का अनुरोध कर राज्यवासियों के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और आलोक आराधे की पीठ ने प्रभावित विद्यार्थियों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और CBSE की से जवाब मांगा है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 और पैकेज 3 के तहत लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को भूमि का कब्जा उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास का कार्य कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

0: तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। कजाकिस्तान के अल्माटी में 12 से 17 जुलाई तक होने वाले एशियन जूजीतशु चैंपियनशिप में देहरादून के रानी पोखरी निवासी रोहित पवार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोहित के कोच नवीन रयाल ने बताया कि रोहित का चयन अंडर 69 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ है। उन्होंने बताया कि रोहित एक होनहार खिलाड़ी हैं। उन्होंने ग्रैपलिंग में अब तक 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा रोहित जूजीतशु के भी राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। वर्ष 2024 में भी रोहित एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब समय है लोक संगीत का। लोक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कुमावनी लोकगीत। गायक कलाकार हैं किशन चंद्र जोशी।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और लोक संगीत के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं कुमावनी लोकगीत किशन चंद्र जोशी के स्वर में।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशन चंद्र जोशी के स्वर में कुमावनी लोकगीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, अगर आप भी अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें फिल्म गीत के बोल और अपना नाम व पता मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-0007-1 7088-0007-1। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हम तक आई है पांडरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल पुराड़े, उषा बुराड़े, अनुश्री और धनुश्री की। साथ ही फरमाइश कर रहे हैं बलहार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्या। फरमाइश करता आप हैं श्रोता, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीजा प्रवीण और जोहानुल होदा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। साथ ही हमें फरमाइश आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा की। अगली फरमाइश हमें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से अखिल, अभिषेक, रिया और उमेश। गांव हिप्परसोगा तहसील से हमें फरमाइश कर रहे हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। फरमाइश करता आप हैं श्रोता, रेलवे रोड गंज मंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबिरुल हसन, बेगम शबनम अनवर और नजमा बेगम नाज। साथ ही हमें फरमाइश कर रहे हैं संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और लालू सिंह बिहार से। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शकीर, शेख वजीर, सोहर शेख, सैयद तमूर और शामिर खान। आदर्श नगर रुड़की से हमें फरमाइश आई है चंदन शर्मा, नम्रता शर्मा, अंशिका शर्मा, राशि शर्मा और रियांश की। तो आए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हिना।

व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। साथ ही हमें फरमाइश कर रहे हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। हैदराबाद किसरा मंडल से हमें मैसेज कर रहे हैं सदानंद और सत्यम्या। गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमें फरमाइश कर रहे हैं लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके सभी दोस्त। फरमाइश करता आप है श्रोता शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। रानीगंज बंगाल से रवि इंदर और उनके सभी दोस्त हमें फरमाइश कर रहे हैं। राजस्थान

से अगली फरमाइश हम तक आई है कुमारी कल्पना, वंदना, आशीष और दीपक की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां हमें फरमाइश कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं हिमकेश्वर साहू, करल राहुल साहू और चंपा साहू। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम और डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। सब्जी मंडी बुल्डाना से हमें मैसेज कर रहे हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। फरमाइशकर्ता आप हैं श्रोता नवाब खान, इशरात जहां और मास्टर अजहर खान और अजीम खान। अगली फरमाइश हम तक आई है हैदराबाद से गोपाल और उमा की। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सीताराम बेगम और नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी हीना खौसर हमें मैसेज कर रहे हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशव अब्बासी और रसीद वारसी। फरमाइशकर्ता आप हैं श्रोता बुल्डाना वाशिंगटन महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। तो आए श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: व्हाट्सएप फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है तेलंगाना करीमनगर से लक्ष्मी नारायण विजया, अभिनय और साई किरण की। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमें फरमाइश कर रहे हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा और GS रामगढ़िया। साथ ही हमें फरमाइश आई है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। चौटाला हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। मैसेज करता आप श्रोता सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्य सिंह और अविरल सिंह। फरमाइश करता आप श्रोता देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश, तनु, नानू और राधिका रानी गुप्ता। साथ ही हमें फरमाइश कर रहे हैं कस्बा उदेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। उत्तम नगर दिल्ली से हमें फरमाइश आई है बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल की। मैसेज करता आप श्रोता उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, नितिन और सुयश। कच्छ गुजरात से हमें मैसेज कर रहे हैं गंगा, गोविंद, विकास, प्रीति, गीता, विशाल, विराट और महेश। साथ ही हमें

0: मैसेज कर रहे हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ मुस्कान और अफजर अली नगमा नाज मंसूरी। मैसेज करता आप श्रोता कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। फरमाइश करता आप श्रोता भरत फ्यूचर सिटी से गोपी किशन। महाराष्ट्र से हमें फरमाइश आई है संतोष और विनोद की। तो आए श्रोताओं इसी के साथ सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम में ये अगला गीत, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: क्या कहा?

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत की। साथ ही हमें फरमाइश कर रहे हैं अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर फुलमाली और वेदिका फुलमाली। फरमाइश करता आप श्रोता स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। जय जिनेन श्रोता संघ परभाणी से हमें मैसेज कर रहे हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रीतेश संगई और उनके सभी दोस्त। नई बस्ती गंजुनवारा से अगली फरमाइश हम तक आई है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी मस्जिद बरेली से। दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। फरमाइश करता आप हैं श्रोता सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बौड़ाना। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं गुरप्रीत सिंह, जसवीर कौर, महकप्रीत और सहजप्रीत। अगली फरमाइश हम तक आई है सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ राजस्थान से हर्षित रामेश्वर, पेरेमेश्वर रामेश्वर, कान्हा, मति मनोहर, बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल और उनके सभी दोस्त। फरमाइश करता आप श्रोता अनारकली बाजार जंगरो पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायिका मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। तो आए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण ने और फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: व्हाट्सएप फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी साहनी की। साथ ही हमें फरमाइश कर रहे हैं जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। मैसेज करता आप है श्रोता तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख।

मैसेज करता आपन श्रोता सांगली जिला जत शहर से अल्ताफ हुसैन, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजैर और रेहान शेख। अगली फरमाइश हम तक आई है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लाडो की। झज्जर हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं बिट्टू, रीटा और रजत मयंक भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से हमें मैसेज कर रहे हैं सुरेश कगनेजा, पूनम कगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा। फरमाइश करता आप हैं श्रोता करुला मुरादाबाद से संयम, नशनीन और रुचिका। तो आए श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म साजन से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

करूला मुरादाबाद से हमें फरमाइश कर रहे हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। साथ ही सिंदौली मीरगंज बरेली से मैसेज कर रहे हैं जीशान वारसी। फरमाइश करता आप श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष शर्मा, रिहान खान, बेबी वेहदी जोशी, हसीना जोशी और पायल जोशी, अंकिता जोशी। फरमाइश करता आप श्रोता जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। कुमारी कल्पना, वंदना, आशीष और दीपक हमें फरमाइश कर रहे हैं शांति निवास अमरावती महाराष्ट्र से। फरमाइश करता आप श्रोता जय जिनेन श्रोता संघ परवाणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई और प्रितेश संगई। अगली फरमाइश हम तक आई है महमद अहमद, फरहाना, मरियम नाज और नबील की सहारनपुर से। मैसेज करता आप हैं श्रोता महाराष्ट्र से आनंद देवघरे, शबु, विद्या, गिरिजा और गजानन सिंह। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जारिफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नजीम अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही अगली फरमाइश हम तक पहुंची है छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसफाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की। मैसेज करता आप श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके सभी दोस्त। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरार और नरगिस खातून हमें मैसेज कर रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। फरमाइश करता आप श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, लोकेश, मनीषा और विद्या। हर्षा रामिकर, दिलीप रामिकर, अक्षय रामिकर, रुद्र रामिकर, रुचिका और उनके सभी दोस्त हमें मैसेज कर रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। तो आए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। फिल्म का नाम है गीत और गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे की। साथियों में फरमाइश कर रहे हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। फरमाइश करता आप श्रोता तेलंगाना स्टेट से फुट पार्क से भवानी वेंकट मास्टर मिथुन महादेव। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है जय विहार।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान की। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और आदिब हमें मैसेज कर रहे हैं गांव कुमार हीड़ा सहारनपुर से। हैदराबाद से हमें मैसेज आया है बीएन रेडू नगर से मोनिका भानु प्रकाश और विनय कुमार का। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूर, राशिद भाई मंसूर और असद भाई, फिरोज मुस्कान, अफजर अली और नगमा नाज मंसूरी। फरमाइशकर्ता आप श्रोता मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, गांव गंज डुंडवारा, अहमदनगर से। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्र, रुचिका और उनके सभी दोस्तों की। आर्यन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी मोहित और उनके सभी दोस्त हमें फरमाइश कर रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो आए श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत आप सभी की फरमाइश पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ABVP के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
3: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
3: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals. Mr. Modi said cooperation in critical minerals is vital for the strategic security and clean energy transition of both countries. He announced the launch of the Australia-India Partnership on Cyber Critical Technologies and Supply Chains, AI Pacts, and said India and Australia will also work together to establish a critical minerals corridor. Earlier this morning, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and an energy crisis. He said in such times it is essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening on a three-day visit to Australia. The US launched new airstrikes against Iran this morning. Tehran responded by targeting Bahrain, Kuwait and Qatar, escalating crossfire that again threatened an interim deal aimed at ending the war in the Persian Gulf. The strikes came hours after US President Donald Trump said recent Iranian attacks on ships in the Strait of Hormuz had signaled the end of the fragile ceasefire. Today's attacks appeared to be larger on both sides. Sirens sounded at least twice in Bahrain, home to the U.S. Navy's 5th Fleet headquarters. There was no immediate word on damage in Bahrain, Kuwait or Qatar. Kuwait's military said it was actively intercepting incoming drones and missiles. Iran's Revolutionary Guard claimed responsibility for attacks on Bahrain and Kuwait. The U.S. military central command said it struck about 90 targets across Iran. Back home, Delhiites woke up to heavy rainfall and thunderstorms this morning. The rain caused waterlogging in various places, due to which traffic movement was severely affected. The IMD had issued a red colour warning for moderate to heavy rain in the national capital, including Haryana. The Delhi government has said teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground to deal with the waterlogging situation. And with that, we end this news bulletin.
0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना में हेड रेस टनल का सफल ब्रेक थ्रू हुआ। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए राहत बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश एम्स में उत्तराखंड वासियों के लिए अलग से ओपीडी पंजीकरण काउंटर खुला। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोटद्वार पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में समर्पित वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता के पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने बद्रीनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में आम जन ने प्रतिभाग किया। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 और पैकेज 3 के तहत लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत काशवी नेगी के गाए भजन। तबला पर संगत दी है सेकत मंडल ने, हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह, बांसुरी पर महेश चंद और गिटार पर अरुणा भाग चट्टोपाध्याय ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत काशवी नेगी के गाए भजन।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत काशवी नेगी के गाए भजन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत से जुड़ने वाली सभी बहनों को गीता राणा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगी और अपने कामों के साथ साथ हमें भी सुन रही होंगी। बहनों, घर परिवार की बुनियाद एक सशक्त नींव पर खड़ी होती है और वह नींव है उस घर की महिला। आज के जमाने में महिला का स्वरूप बहुत बदल गया है। वो एक अच्छी होम मेकर भी है, यानी वो घर को भी संभाल रही है और बाहर का भी काम अच्छी तरह से संभाल रही है। चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल रही है। घर पे वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखती है और ये भी चाहती है साथ में कि उसके परिवार के सदस्य भी उसके कामों में उसका हाथ बटाएं। आज की महिलाएं घर और बाहर दोनों को देखती हैं। महिलाओं को सारी जिम्मेदारियां, घर और बाहर की जिम्मेदारी के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, तभी वो सभी काम अच्छी तरह से कर पाएगी। महिलाओं को चाहिए कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए और जो भी उनके शौक हैं वो उनको पूरे जरूर करने चाहिए। उसके साथ साथ खुद को फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए हल्का व्यायाम, चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, चाहे आप बैडमिंटन खेलें, कोई योग आदि करें, इस सबसे अपने आप को फिट और दुरुस्त रखना चाहिए। और इन सब कामों के अलावा आपको अपने लिए, खुद के लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। चाहे आप ऑफिस में काम कर रही हैं, चाहे आप घर पर काम कर रही हैं, अगर आपको कोई भी तनाव है तो आपको बातचीत करके, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से बात करके उस तनाव को, उस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तनाव लेंगी तो उसका असर आपके घर पर और आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको तनाव से बचना है और अपने शौक, आपके जो भी शौक है उनको समय निकालकर पूरा करना है। कार्यक्रम में समय हो चला है महिला जगत के अंतर्गत रेडियो सखी फोन इन कार्यक्रम का। आज हम अपनी बहनों से यही पूछते हैं, अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है और क्या वो अपने लिए समय निकाल पाती हैं? चलिए देखते हैं हमारे साथ पहला कॉलर कौन जुड़ा है। हेलो, रेडियो सखी में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, कौन हो आप?
0: हम बढ़िया हैं। पहले ये तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वसुधरन चालिया जिला वाराणसी से बोल रही हूँ। हम ठीक है मैम।
0: अच्छा बताइए इरम, क्या करती हैं आप?
1: जी मैम, मैं जरी का काम करती हूँ।
0: जरी का काम करती हैं, क्या क्या बनाती हैं जरी के काम में?
1: जरी काम में साड़ियाँ बनाती हैं, साड़ियों में काम करती हूँ और सूट में काम कर लेती हैं। सूट का काम आता है, साड़ी का काम आया
0: है। तो शादियों के लिए भी बनाती है, लहंगे वगैरह में भी काम करती है?
1: हाँ, लहंगे में भी कर लेती है।
0: जब आप जरी का काम करती तो बहुत बिजी रहती होंगी?
1: हाँ मैम, बिजी रहती है।
0: आप अपने लिए भी समय निकालती है?
1: हाँ मैम, अपने लिए भी टाइम निकाल लेती है।
0: अपनी पसंद का क्या करती हैं?
1: मैं अपनी बहन का खाना बना लेती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने लिए भी समय निकाल लेती हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इरम। बताइए गाना कौन सा सुनेंगी?
1: ये फिल्म का नाम है तुम तो प्यार है, वाणी तो
0: ठीक है। इरम, रेडियो सखी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते राबिया, कैसी हो?
1: दीदी जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं राबिया बात कर रही हूँ।
0: देखो, आप हमें पहचान लेती हैं तो हम आपको नहीं पहचानेंगे क्यों?
1: हाँ हाँ जी, तराना जी, हमने तो आपको पहचान लिया है।
0: अच्छा राबिया, क्या कर

0: समय?
1: दीदी जी, मैंने खाना खा के आई हूँ जी, अभी भी अभी कॉल लगा था, अभी कॉल लग गए जी।
0: हाँ जी हाँ जी, चलिए आपने अपने काम पूरे कर लिए हैं। अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या क्या हैं?
1: दीदी जी वो और जगह पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा ये बताइए, पढ़ाई करती हैं तो इन सब के अलावा क्या अपने लिए टाइम भी निकाल पाती है कुछ?
1: हाँ जी दीदी जी, मैं आपके बहुत सारे कार्यक्रम सुनती हूँ, गीत आपके विचार हमारे, और भी रेडियो से की कार्यक्रम सुनती हूँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: हेलो
0: अच्छा
1: फरमाइश कार्यक्रम सुनती हूँ, आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ, आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी
0: तो अपने शौक पूरा करने के लिए आप समय निकाल पाती है ना?
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप शौक भी रखती हैं और अपने शौक पूरा करने के लिए समय भी निकाल पाती हैं। अच्छा ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगी राबिया?
1: दीदी जी, पहले तो मैं अपने मित्रों का नाम लेना चाहूंगी। दीदी जी, मेरे मित्र ये जो है शहनाज मलिक है, महराज मलिक है, सानिया मलिक है, हिना कोसर है, नरगिस है, फरा है, मुझे पदवर्ष है,
0: अच्छा,
1: और तीरी भीत है,
0: ठीक
1: और
0: ठीक ठीक
1: फिजा मलिक है,
0: हाँ
1: और समा पर भी नहीं, ये मेरा मित्र है।
0: बहुत अच्छी बात है, आपके मित्र आपको सुन रहे होंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे आपने उनका नाम लिया। अच्छा आप बताइए गाना कौन सा सुनेंगी?
1: और दीदी जी फिल्म का नाम तो रहेगा नो एंट्री,
0: और गाना
1: और गाने के बोल रहे इश्क की गली नो एंट्री।

0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैं राना मजीद हूँ
0: कैसी है महराना?
1: जी। ठीक है, आप बताइए, आप कैसे
0: हम
1: हो?
0: भी बढ़िया हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: गांव अगवानेड़ा कस्बा कस्बा सरसावा जिला सहारनपुर।
0: सहारनपुर से। अच्छा, क्या करती है महराना आप?
1: मैं मुझे कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे ही रहते हैं।
0: घर पे रहते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। ऐसा कैसे हो
1: अभी नहीं
0: सकता है?
1: बैठे रहते हैं, घर का काम करते हैं बस, घर का ही
0: तो फिर कुछ भी नहीं कैसे हो गया वो, ये बताओ पहले।
1: जी
0: ये कहो ना कि घर के कामों में
1: जी
0: हाथ बटाते। शादी हो गई आपकी?
1: जी शादी हो गई थी मैम, दो
0: हाँ,
1: बच्चे हैं।
0: तो फिर कैसे कह रही हो कि कुछ नहीं करते? पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती होंगी आप, क्यों?
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर
1: मैम
0: अच्छा, तो घर में अपने बच्चों की देखभाल, अपने घर की सफाई, सब कुछ तो करती होंगी?
1: जी जी मैम जी
0: तो इतने सारे काम करती हो आप, तो पूरी होम मेकर हो।
1: जी मैम जी सारा काम, सुबह का खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े प्रेस, स्कूल भेजना।
0: हाँ, अब ये बताइए, इतने काम आप करती हैं तो बहुत बिजी रहती होंगी।
1: जी मैम जी बिजी रहता है, फिर टाइम
0: हाँ,
1: निकाल
0: तो
1: के
0: फिर ये
1: आराम से
0: बताइए,
1: किया है।
0: अपने लिए समय निकाल पाती हैं क्या इतने बिजी शेड्यूल में?
1: जी निकाल पाते
0: क्या करती हैं अपने लिए जब समय निकालती हैं उस खाली समय में?
1: हैं जी, बस 1 घंटे की दिन में नींद ले लेते हैं,
0: अच्छा, अपने
1: और
0: को रिचार्ज कर देती हो ताकि दोबारा काम करने के लिए मैं फिट हो जाऊं, है?
1: जी मैम
0: हाँ, अच्छा, और क्या करती हैं उसके अलावा, कभी टाइम और मिल गया तो?
1: अजी बस कुछ दिन अपनी बहन से और किसी दोस्त से बात कर लेते हैं फोन पे।
0: हाँ, अपना मन भी आप बहला लेती हैं, अपने दोस्त मित्रों से, बहनों से बात कर लेती हैं।
1: जी आपकी रेडियो सिटी का प्रोग्राम सुन लेते हैं
0: अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगी महराना?
1: जी, सुनवा दी। और फिल्म का नाम तो मालूम नहीं है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
0: रेडियो सखी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्ते, नाम तो बताइए अपना।
1: मेरा नाम नबिया है। मैं
0: नबिया, कहाँ से बोल रही है नबिया?
1: ककराना से बोल रही हूँ, सहारनपुर में। आप कैसे हो मैम?
0: हम तो अच्छे हैं नबिया, आप कैसी हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ।
0: अच्छा नबिया, बताइए क्या करती हैं आप,
1: मैं कॉलेज जाती हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं?
1: मैं 10वीं में हूँ।
0: अच्छा 10th में हैं अभी आप।
1: यस मैम।
0: ओके, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या आप अपने लिए मी टाइम जो होता है अपने लिए समय निकाल पाती हैं? क्या करती है उस टाइम पर?
1: मैम मुझे सिलाई करना पसंद है।
0: अच्छा, आप मतलब जो आप अपने लिए समय निकालती हैं उसमें आप अपने शौक पूरे करती हैं।
1: यस मैम।
0: तो आपको क्या लगता है कि अपने लिए समय निकालना जरूरी होता है?
1: यस मैम, अपने लिए जरूरी होता है
0: वो क्यों जरूरी है बताएंगी?
1: मैम। हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए जिसमें हमें अपने शौक को पूरा करना चाहिए।
0: हाँ, और उसमें आपको खुशी भी मिले, है ना,
1: यस मैम।
0: और फिर आप दोबारा से रिचार्ज हो जाएं अपने कामों को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या घर के कोई काम काज हो। क्यों ना भैया, आप ये बताइए गाना कौन सा सुनेंगी आप?
1: मन मन किटिम का कोई भी गाना सुना दीजिए। मैं
0: ठीक है ना भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो सखी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, ये था आज का रेडियो सखी कार्यक्रम। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है बुधवार दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक। आप भी इस कार्यक्रम में कॉल करके हमसे बात कर सकती हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए 7088001382। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7088001382। अब अपनी सखी गीता राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत दूरस्थ गांवों तक पहुंचा शासन प्रशासन। बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोटद्वार स्थित नारी पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। 7 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। उन्होंने ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों में अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कोई परेशानी न हो। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर, जन जागरूकता कार्यक्रम और विकास प्रदर्शनी का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करते हुए हजारों नागरिकों को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में प्राप्त जन समस्याओं और शिकायतों का बड़ी संख्या में मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है, जबकि शेष मामलों के समयबद्ध निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। इन शिविरों में अब तक 5,300 से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की, जबकि 4,470 से अधिक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में प्राप्त 415 शिकायतों में से 180 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक सुशासन और जनसेवा की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, जनसेवा शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों का समय, श्रम और धन बच रहा है तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 और पैकेज 3 के तहत लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को भूमि का कब्जा उपलब्ध कराने को कहा है। सचिवालय में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण सहित विभिन्न विषयों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित कार्रवाई पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों की डीपीसी का प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सके। देहरादून में आयोजित बैठक में डॉ. रावत ने शिक्षकों की वरिष्ठता से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एलटी से प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर आयोग को भेजने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पदोन्नति के अधिकतम रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में भी सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि इस प्रावधान का शिक्षकों की पदोन्नति पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित नारी पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्र महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आश्रित रही एक मेधावी युवती वर्तमान में पुनर्वास केंद्र से बीटेक की पढ़ाई कर रही है, जो केंद्र के सकारात्मक प्रयासों का उदाहरण है। अध्यक्ष ने केंद्र में रह रही महिलाओं और युवतियों से संवाद भी किया तथा संबंधित अधिकारियों को महिलाओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में वर्चुअल माध्यम से मंडल के जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ हरेला पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को धामों के आसपास तथा चार धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में रामबांस, नेपियर घास और भूस्खलन रोक में सहायक प्रजातियों का रोपण करने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने उद्यान विभाग को फलदार और औषधीय पौधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए विभागवार लक्ष्य के अनुसार पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
2: सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो जो है सरकार के निर्देशानुसार उचित ढंग से और लक्ष्य के अनुरूप जो है ये व्यवस्थाएं कराएंगे। मेरे स्तर से उन्हें कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं, जैसे जन सहभागिता बढ़ाने के लिए हर घर को एक पौधा दिया जाना, जिसे वो अपने यहाँ लगा सके उसको, या अगर उसके पास स्थान नहीं है तो गमले में लगा सके। इससे लोगों का ये सरकारी कार्यक्रम न होकर के ये सभी लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा। और भी मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन प्लांट, कुछ ऐसे घरेलू उपयोग के पौधे लगाने के भी सजेशन दिए।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर आज राज्य के कुछ जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। इस बीच राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की अपील भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत दूरस्थ गांवों तक पहुंचा शासन प्रशासन। बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोटद्वार स्थित नारी पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, 7 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बचना है हसीनों से विशाल शेखर, लकी अली, श्रेया घोषाल और अनविता दत्त की आवाज़ में इस गीत को। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अंदाज़।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जयहू से शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और बोल लिखे हैं समीर अनजान ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।

0: जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेला। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
3: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
4: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
3: जी पिताजी।
4: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है। वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
4: हाँ ये तो है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे हैं।
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: अरे क्या बाकियों सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में

0: पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
0: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, अरे
3: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: ये अरे ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीनों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नाव के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
6: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
5: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था। रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
7: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
8: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत।

जय हिंद सैनिक साथियों। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस वीर योद्धा की जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा तथा राष्ट्रभक्ति से देशवासियों के दिल में स्थान बनाया। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर विजय रतन चौधरी की।

मेजर विजय रतन चौधरी भारतीय सेना के उन जाबाज अधिकारियों में से थे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन साहस, अनुशासन और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। रणभूमि में उन्होंने असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा और राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम मेजर विजय रतन चौधरी के बारे में और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म भाग मिल्खा भाग से सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में इस गीत को।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मेजर विजय रतन चौधरी की। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में भारतीय सेना का अभियान निर्णायक मोड़ पर था। शत्रु ने आगे बढ़ती भारतीय सेना को रोकने के उद्देश्य से व्यापक क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। मेजर विजय ने अग्रिम मोर्चे पर पहुंचकर सुरंगों को निष्क्रिय करने का कार्य आरंभ किया, जिससे भारतीय सेना बिना रुके आगे बढ़ी और अभियान को गति मिली।

11 दिसंबर 1971 को जब मेजर विजय रतन अपने साथियों के साथ दुश्मन की तीव्र गोलाबारी के बीच बारूदी सुरंगों को हटाने के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, तभी वे शत्रु के हमले का शिकार हो गए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनका यह सर्वोच्च बलिदान केवल एक सैनिक का बलिदान नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण और अदम्य साहस का अमर प्रतीक बन गया।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मेजर विजय रतन चौधरी की। मेजर विजय के अद्वितीय शौर्य, असाधारण नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान को राष्ट्र ने सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से मरणोपरांत अलंकृत किया। यह सम्मान केवल उनके व्यक्तिगत पराक्रम का प्रतीक नहीं, बल्कि उन सभी सैनिकों के साहस और समर्पण का सम्मान है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने बात की मेजर विजय रतन चौधरी की। इसी के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। जय हिंद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सैनिकों के लिए फिल्म संगीत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। कम अनुपात वाले जिलों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित घट्टी गोला क्षेत्र के संपर्क मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय जन सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करते हुए हजारों नागरिकों को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षकों की डीपीसी का प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए ताकि लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सके। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार।

0: दार है। अब तक घाटी में रिकॉर्ड 7,380 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन को 11 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। बागेश्वर जिले में अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वज्यूला के भौतिक विज्ञान विभाग ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की दिशा में एक अभिनव पहल शुरू की। जल संजीवनी चाल खाल अभियान के तहत पहले चरण में विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में 100 चाल खाल बनाने का लक्ष्य रखा। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म रांझणा से राशिद अली और नीतन मोहन की आवाज़ में इस गीत को। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं प्रीतम कमाल खान, नक्श अजीज और देवनेगी और तुषार नेगी की आवाज़ में फिल्म ट्यूबलाइट से इस गीत को। गीत को आवाज़ दी है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सैयारा। इस गीत को संगीत से नवाजा है मिथुन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बुलेट राजा। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं रोमी और पवनी पांडे की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फिल्लौरी। इस गीत को संगीत से नवाजा है।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोतीचूर चकनाचूर फिल्म से अर्जुना हरजाई और यासर देसाई की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से नवाजा है अर्जुना ने और वो लिखे हैं कुमार ने।

गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जबरिया चोरी से। इस गीत को आवाज़ दी है यासिर देसाई अल्तमश फरीदी ने। इस गीत को संगीत दिया है तनिष्क बाख्शी ने और बोल हैं रश्मि विराग के।

फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर से सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये अगला गीत। इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। शब्द रचना है विशाल मिश्रा की।

कार्यक्रम गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दबंग 3 से आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। गीत को आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल ने। संगीत है साजिद वाजिद का।

फिल्म दे दे प्यार दे से अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है रोचक खोली ने।

फिल्म कॉकटेल 2 से अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये अगला गीत। इस गीत को संगीत से नवाजा है प्रीतम ने और शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

शाहिद माल्या और जोनीता गांधी की आवाज़ में फिल्म मनमर्जियां से सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत। इस गीत को संगीत से नवाजा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं, और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में। मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था,

0: उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा करके फिर वो तमगा हासिल किया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा आपको, फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई, और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए। तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी,
1: जी
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: जी
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
1: जी
0: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और
1: जी
0: ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या
1: जी
0: आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो
1: जी
0: पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, और सिक्योरिंग आपने पहली पोजीशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की एकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है, उस
1: जी
0: क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत
1: जी
0: सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं।
1: जी
0: इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक
1: जी
0: फौजी में तब्दील करती है, लेकिन वो दैट
1: एग्जैक्टली
0: इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है,
1: जी
0: उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और
1: जी
0: एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज
1: मतलब
0: कराए
1: आप अपनी
0: जाते हैं।
1: निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी
0: ये
1: एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों
1: जी
0: तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में,
1: जी
0: दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को, मोराल को हाई रख सकें और

0: इलेक्शंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसकी ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरी ये मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पे मिला, मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बींग अ लोकल मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी।
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है, तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा?

0: या भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत
0: जी
1: धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है,
0: जी
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है,
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी
1: तो फौजी फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है,
0: जी
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के तीन रास्ते हैं।
0: जी
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है,
0: ओके
1: जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
0: जी
1: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी
1: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने
1: जी
0: यूपीएससी
1: बिल्कुल,
0: पास करके
1: जी बिल्कुल,
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी मास्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
1: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले एक दो वर्षों में ही
0: जी
1: ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे,
0: जी
1: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह,
0: जी
1: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद,
0: जी
1: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
0: जी और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
0: जी तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से,
0: जी
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
0: जी
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
0: जी
1: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे, जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
0: जी
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका

0: वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे,
1: जी
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले, या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, लगभग हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे, हमने दो टीमें बनाई। और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं,
1: बिल्कुल
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट,
1: और
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: हमें
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी,
0: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी,

0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो
1: मर जाऊंगा।
0: मैं मर
1: जी जी
0: जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं इसे अपने
1: बिल्कुल
0: जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा,
1: बिल्कुल सर
0: जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व,
1: जी
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ,
1: बिल्कुल
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था
1: जी
0: उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
1: क्या
0: मैं
1: बात
0: बैठ के
1: है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर।
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं
1: जी
0: मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता
1: जी
0: है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं।
1: जी
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना,
1: जी
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो
1: जी
0: अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं,
1: जी
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस
1: बिल्कुल
0: का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो
1: बिल्कुल,
0: आनंद आता है, वो
1: उसके
0: उसको
1: कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: क्या
0: सकता।
1: बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची तिरुचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद, और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा कजरा लिखा है ये।
1: कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते
0: बिल्कुल
1: हैं?
0: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे जूनियर
1: अच्छा
0: और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है, क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं
1: साथी हैं
0: जिन्होंने
1: आपके।
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये, जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, आई बो माई हैड टू देम, सो आई वुड से जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माई सेल्फ शंकर लोध एंड माई वाइफ अंजलि लोध ऑफर ओबीडियंस टू ऑल माई टू देम, माई रिक्वेस्ट टू आरजे सर प्लीज फॉरवर्ड माई मैसेज शिवम सर, थैंक यू सर, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं।
0: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद।
1: जी इसके अलावा मैसेज है ये, शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से।
0: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको।

0: राजेश जी, मुझे
1: और
0: खुशी है कि
1: जी
0: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी सभी वर्ग
1: सभी
0: के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
0: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि
1: जी
0: रही है, तो यहाँ से मैसेज आया।
1: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
0: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग
1: जी,
0: फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
1: और ये है सर, जय हिंद सर। प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
0: जी रोहित जी, धन्यवाद। मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के
1: जी
0: बीच की जो खाई है,
1: जी
0: उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा
1: पाटना है,
0: उद्देश्य था।
1: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूं, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूं। उम्मीद करती हूं हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूं, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार
0: धन्यवाद विश्वजीत जी, हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी। और यह है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
0: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: उसकी
1: ये
0: ट्रेनिंग।
1: उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
0: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं उनको
1: ओके
0: अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
1: ओके,
0: जो
1: क्या
0: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है, तो
1: बात है सर। तो नरपत सिंह जी
0: धन्यवाद।
1: भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही ट्रूली डिजर्व ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं, और मैं उम्मीद
1: अच्छा
0: करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है,
1: जी
0: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के
1: बिल्कुल,
0: साथ।
1: और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही हैं आपके लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
1: और यह है मैं सोता हूं रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
0: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
1: और यह है सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला। कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथी हैं भी।
0: जी पंकज हमारे साथ के थे, और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने
1: जी
0: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया
1: जी
0: है।
1: जी जी और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
0: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन ये
1: जी
0: संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
0: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं FM रेडियो को, FM रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
1: जी
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के
1: बिल्कुल
0: राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी।

फेसबुक का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी। और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी January 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी। तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है, वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था, और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।

0: सुनाना चाहता था, हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था, जब मैं बाहर रहता था 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है। ये हैं पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से, और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं। ये हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथ ही होंगे
0: बिल्कुल मेरे साथ
1: बाबुल
0: ही हैं और
1: जी।
0: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय, श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद, जय भारत।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में श्री मोदी ने सिडनी में प्रवासी भारतीयों से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे मेलबर्न के लोगों से भी बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
4: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई PM यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
4: PM सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
3: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4था T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

शाम 7:25 पर आप सुनेंगे न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर सुश्री मुआन पुई साइवी के साथ एक खास भेंटवार्ता। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर समय रहेगा युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चिट्ठी पत्री। प्रस्तुतकर्ता होंगे विनय ध्यानी। किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:00, जिसके अंतर्गत सुनिएगा बरसात में सब्जी वर्गीय फसल में समसामयिक की कार्य विषय पर डॉक्टर एसपी सिंह से वार्ता। आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण का समय रहेगा शाम 7:50 पर।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गीत रात्रि 8:15 पर। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर, रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राग मियां मल्हार पर भीमसेन जोशी का ख्याल गायन।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पूजा ध्यानी के गाए गढ़वाली गीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर, जिसे प्रस्तुत करेंगी संगीता सेमवाल। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:00। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11:00।

लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे नकटी देवी और साथियों के गाए जौनसारी गीत। कल प्रातः 10:35 पर महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत। कल दोपहर 12:30 पर जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे श्रीमती रजनी चौहान से कविता पाठ। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राग जयजयवंती पर उस्ताद अमजद अली खां का सरोदवादन। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे अभिनेता आलोक नाथ। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को है। पेश है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: ढलती शाम का है अपना ही श्रृंगार, सुरों से सजेगा हर एक विचार,
1: मिलकर करेंगे खुशियों का विस्तार। स्वागत है आपका, नमस्कार नमस्कार, हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं सोनाली कठत
0: और मैं हूँ अतुल्या रावत। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम बहुत अच्छे से बीत रही होगी। वैसे सोनाली, जब भी हम पर्यटन यानी टूरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में खूबसूरत पहाड़, समुद्र या प्राकृतिक नज़ारे आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति सिर्फ इलाज कराने के लिए भी दूर देश की यात्रा कर सकता है?
1: अब दोस्तों आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश में रहता है जहाँ मेडिकल केयर का कॉस्ट बहुत हाई है, इतना हाई कि इंश्योरेंस भी कई बार उसे कवर ना कर पाए, और वेटिंग इतनी लंबी कि लोगों को महीनों तक का इंतज़ार करना पड़ जाए, तो ऐसे में क्या वो किसी दूसरे देश में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहाँ सेम मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, वो भी कम खर्चे और बिना किसी लंबे इंतज़ार के? तो इसका जवाब है हाँ, और ये पॉसिबल होता है मेडिकल टूरिज्म यानी कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल।
0: हाँ सुनाली, और पता है ये सिर्फ एलोपैथी के फील्ड में ही नहीं, बल्कि अगर कोई यदि कोई व्यक्ति योग, आयुर्वेद या अन्य पारंपरिक उपचारों के माध्यम से अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ट्रैवल करना चाहता है दोस्तों, तो इसे वेलनेस टूरिज्म कहा जाता है। और भारत में ये सब मिलकर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का आधार बनाते हैं।
1: बिल्कुल, और हो भी क्यों ना अतुल्या, एक तरफ हमारे पास मॉडर्न एलोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं जहां हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डेंटल केयर उपलब्ध है, और
0: बिल्कुल
1: दूसरी ओर हमारा जो भारत है उसकी सदियों पुरानी आयुष परंपरा जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे सिस्टम शामिल हैं।
0: और यही वजह है सोनाली कि भारत को दुनिया के 46 प्रमुख मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन में 10वां स्थान मिला है। वहीं वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में भारत दुनिया के 20 टॉप वेलनेस टूरिज्म मार्केट्स में से एक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एशिया पैसिफिक रीजन के टॉप 10 वेलनेस डेस्टिनेशन में भी भारत अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।
1: और दोस्तों इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने हील इन इंडिया अभियान

0: भी चलाया है। और पता है अतुल्या, कई विदेशी मरीज पहले मॉडर्न मेडिसिन से अपना इलाज कराते हैं और उसके बाद फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए योग, आयुर्वेद और बाकी आयुष सिस्टम्स का सहारा लेते हैं।
1: जी हाँ, और डेटा के अनुसार साल 2025 में भारत लगभग 5.5% फॉरन टूरिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के उद्देश्य से आए थे सोनाली। और दोस्तों, मेडिकल ट्रैवल हमारे युवाओं के लिए भी संभावना लेकर आया है, लेकिन अब सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन, मेडिकल ट्रांसलेशन, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन, वेलनेस मैनेजमेंट और योग विशेषज्ञों की भी मांग लगातार उतनी ही बढ़ रही है।
0: अतुल्या, आज भारत केवल बीमारियों का उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश भी दुनिया तक पहुंचा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, अब बातें तो जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राजनीति से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
0: दोस्तों, आज है गुरुवार, यानी कि वो दिन जब हम आपके लिए रोजगार समाचार का हमारा ये खास सेगमेंट लेकर आते हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके लिए रोजगार समाचार कुछ इस क्रम में।
3: दोस्तों, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिकल ट्रेनर, कोच, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के पद शामिल हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है और आप www.gkv.ac.in पर विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने देहरादून के अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 77 पद भरे जाएंगे दोस्तों, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 19 पद, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 8 और ITI अप्रेंटिस के 50 पद शामिल हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास बीटेक, BE डिप्लोमा, ITI, B लाइब्रेरी की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई है और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
3: दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT उत्तराखंड ने प्लेसमेंट ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपके पास MBA की डिग्री और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के फील्ड में कम से कम 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जुलाई है और वक्त जो है वो है शाम को 5 बजे तक, और आप NIT UK.ac.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं।
0: CSE e-Governance Services India Limited ने आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर पदों पर भर्ती निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये नियुक्तियां 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि csc.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
3: दोस्तों, इसरो और इंडियन स्पेस ट्रैकिंग ने विभिन्न पदों पर वैकेंसीज निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपके पास रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है। 20 जुलाई तक आवेदन खुले रहेंगे और आप www.isro.gov.in पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NEEPCO ने विभिन्न विभाग में कुल 38 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है दोस्तों। अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास BE, BTech, CA, CMA, MBA या मास कम्युनिकेशन में PG का डिप्लोमा अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि NEEPCO.CO.IN पर विजिट कर सकते हैं।
3: सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दोस्तों टेक्नीशियन 1 के लिए वैकेंसीज निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेटेड ट्रेंड में ITI का अनुभव होना अनिवार्य है। आप www.cmeri.res.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं।
0: इसी के साथ दोस्तों, रोजगार समाचार का हमारा ये खास सेगमेंट यहीं संपन्न होता है। चलिए अब पेश करते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म जीनियस से। आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने घरों में बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा पहुंची है, या आने वाले वर्षों में कितने नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन सवालों का जवाब आप कहाँ से लेकर आएंगे?
1: अरे सोनाली, इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक ऐसी प्रक्रिया में जो हर व्यक्ति तक पहुंचती है, हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है और पूरे देश की तस्वीर सामने लाकर रख देती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया का नाम है जनगणना और है

0: 27 की जनगणना तो शुरू हो गई है। ये दो चरणों में होती है। इसमें पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और आवास गणना का कार्य जो कि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद मुख्य जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा।
1: जी हाँ, और पता है दोस्तों, जनगणना पूरे देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी जुटाने की एक प्रक्रिया है। इसमें केवल लोगों की संख्या ही नहीं गिनी जाती, बल्कि उनकी आयु, शिक्षा, रोजगार, परिवार, रहने की स्थिति और भाषा जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी एकत्र की जाती है। यानी ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं, बल्कि देश की पूरी तस्वीर सामने लाने का एक तरीका है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर सरकार को ये ही ना पता हो कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं और या कहाँ अस्पतालों की ज़रूरत है, तो विकास की सही योजना कैसे बनेगी। इतना ही नहीं, ये जानकारी ये भी बताती है कि देश की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर कैसा है और किन क्षेत्रों को ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि जनगणना में अपनी जानकारी देने से क्या ही फ़ायदा होगा।
1: अरे, इसके तो फायदे ही फायदे हैं अतुल्या।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आपकी दी गई जानकारी से सरकार बेहतर नीतियाँ बना पाती है और रिसोर्सेज को सही तरह बांट पाती है। इसीलिए जरूरी है कि जनगणना में हम सही और पूरी जानकारी अपनी तरफ से दें। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है सोनाली कि जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इसका उपयोग केवल स्टैटिस्टिकल और विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय दोस्तों हमें जागरूक रहना चाहिए और जनगणना में पूरा सहयोग देना चाहिए।
1: दोस्तों, जनगणना केवल एक सरकारी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि ये देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है भारत की प्रगति की ओर। चलिए, अब सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लकी से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में।

0: दोस्तों, हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत धन्य है। कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं हिमालय। और ये तो हम सभी जानते हैं ना सोनाली, कि भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं का बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों, बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों से होकर गुजरता है।
1: जी हाँ, और पता है अतुल्या, इन इलाकों में देश की सुरक्षा करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि यहाँ सामान्य जीवन जीना भी आसान नहीं होता। तो बताओ, आप कोई सुरक्षा करने जाए तो उसको कितनी दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि LAC, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पास जो है आता है, और ये पहाड़ी इलाकों में आता है।
0: बिल्कुल सोनाली, और इसीलिए तो इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स का गठन किया गया। दोस्तों, इसे भारतीय सेना की 17वीं कॉप्स या ब्रह्मास्त्र कॉप्स भी कहा जाता है, और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में है। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि ये माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स आखिर है क्या?
1: अतुल्य, आसान शब्दों में समझें तो ये भारतीय सेना का एक ऐसा स्पेशल मिलिट्री फॉर्मेशन है, जिसे पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन, बर्फबारी, फिसलन भरे रास्ते और अचानक बदलता मौसम, इसीलिए इन कॉर्प्स के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है।
0: सोनाली, और सिर्फ ये ही नहीं, इन सैनिकों को धैर्य, अनुशासन, तेज निर्णय लेने की क्षमता और टीम के साथ मिलकर काम करना भी तो सिखाया जाता है। दोस्तों, कई बार उन्हें ऐसे इलाकों में रहना पड़ता है जहां महीनों तक कड़ाके की ठंड रहती है और सामान्य सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती।
1: और पता है अतुल्या, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प जो हमारी है, उसका मैस्कॉट भी हिम तेंदुआ है। ये उन सभी क्वालिटीज को दर्शाता है जो इस कॉर्प के सैनिकों में दिखाई देती है,
0: बिल्कुल।
1: यानी कि फुर्ती, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता। और पता है, हमारे उत्तराखंड के तो कई युवा इन चुनौतियों से पहले ही वाकिफ रहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली तुमने। और अब दोस्तों, जमाना आधुनिक है तो समय के साथ भारतीय सेना भी लगातार खुद को और आधुनिक बना रही है। इसी दिशा में वर्ष 2026 में माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स ने एक बड़ा बदलाव शुरू किया गया, और वो ये है कि अब इसे छोटे, तेज और ज्यादा सक्षम इंटीग्रेटेड बैटल

0: ग्रुप यानी IBGS के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एकदम भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक तैयार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: दोस्तों, चाहे बर्फीली ठंड हो, तेज बारिश हो या कठिन पहाड़ी रास्ते, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हैं और उनसे हमें भी एक पाठ सीखना चाहिए और वो है साहस और समर्पण का। चलिए अब एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का हमारा युवानी कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा खत लिखने का पता है, कार्यक्रम युवानी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001।
1: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com और आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आज के लिए हमें यानी सनाली और अतुल्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 5:45 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम सुनवाला सभ्य सुनदरा भाई बहनों को नमस्कार शिवसौली दगड़ियों मिछो मीना उनियाल स्वागत कनु छो आप सभी को ग्राम जगत कार्यक्रम में भाई बंदो आज तारीख होएगी 9 और दिन च भिप्यार आप जानते भैली कि आज कार्यक्रम में चिट्ठी पत्रियों को क्रम च तो सप्ताह भर के चिट्ठी बचे जेली आप हमको अजू भी झटपटाक वाली चिट्ठी यानी कि मेल कर सकदा हमार आईडी च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप हमको अजू भी झटपटाक वाली चिट्ठी भेज सकते हो और हमारा चिट्ठियों को दूसर पता च चिट्ठी पत्री ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिंच 248001 तो भे बंदो पता मीना आप दुआ बताइए न लेकिन झटपटाक वाली चिट्ठी अजू भी ऐ सके ब्याल बखुन बटे के खूब सारो बरखणु छु और बरखण भी जरूरी छ किला कि बस गया लग्यू भे बंदो यूं चौमासों में खान पान का और साफ सफे की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हों तो नितर के आज की बीमारी होना डेर रहें अगर हम खान पान की बात कर दें तो आजकल यूँ ताजो सुपाच्य और गर्म खाना का खाण चे आणु बासी और खुला में रखियो तलियो भुनियो बिल्कुल नहीं खाण और जग तक हुआ घारा खाना खाण खाना के अलावा अगर पानी का इस्तेमाल कर दें तो उबालिकन या फिर फिल्टरक पानी ही पीण चे आणु अदरक हल्दी तुलसी पत्ता खाण में शामिल करना जैसे कि आज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ घर को अपने एक याद आने दगड़ियों की लगी आजकल जमीन फलिंडा बिलंगुर किनगोड़ा बेड़ू तिमुलू खैंडू गुबिला आदि बस गले फल खूब पकड़ा वाल इस सब ये फल फूल साग भुजी जो हमारे घर गाँव अपने बड़ों में आसानी से मिल जाने ये पौष्टिक तो हों दी छन दगड़ में दवे काम भी कर दें और अगर बंडी खरीद आ ना बेड़ तिमुल तो कभी कभी बिगाड़ भी कर देना तो उत्ती खाण जतक पचे सके यार

बेबनो चिट्ठी आप साल गया अमल की चिट्ठी बचेली, लेकिन घड़ेक माँ आपक चिट्ठी बचे जेली। पहले कर दा कि कार्यक्रम मशुड़न दा आप अकड़ो चौमासो गीत मंजू सुंदरियाल का गयो कि लकी बरखा लगी उच, और ये गीत सुन सुनी कर आप बरखा भी दिखना रहे ना और गीत का आनंद भी लिया। तो लिया सुना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
6: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
5: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: भवनो मंजू सुंदरियाल का गयु अभियापन सुनो, गड़वली बरखा गीत और दगड़ मारे वार भी सुने, और यकम बैठ बैठ के बुल्द बुल्द में छुटना छो कि हमार भय बंदा चा कूला और बरखा के झुमड़ाट दगड़ कार्यक्रम का आनंद जरूर लेना वाल, और कोई गाड़ी में बैठे कर कार्यक्रम सुना वाल, कोई भय बंदा चिट्ठी सुना के जुगाल करना वाल के कब चिट्ठी बचेली और जो चिट्ठी लिखी वेली वो तो जरूर जुगाल करना वाल। तो आवाज सुन दा चिट्ठी पत्रियों को अंक।

चिट्ठी पत्रिका आज का अंक में आप सभी का स्वागत। मिचो आपक दगड़ विनय ध्यानी। श्रोता भाई बंधो, चिट्ठी पत्रियों को यो कार्यक्रम हफ्ता में एक दिन यानी भी प्यारा दिन आज हूं और हम सार लग्या रहना कि आप मरा भाई बंधो की चिट्ठी पत्री एली ऊत हम कार्यक्रम में बचला। लेकिन अब वो गीत भी मिजा सजमनी बैठनु कि तेरा गो को डाकवान तेरी चिट्ठी लिया दू तू रही बणो मा वो कहीं मध्य जा दू अब वो चिट्ठी जमन नहीं छा। अब तो अपन एक दा चुला दे और वो सेकंडों में पहुंच जा यानी ईमेल। तो ईमेल पर आपक चिट्ठी हम तक पहुंचना छन और लगा लगे पहुंचना छन। तो स्वागत है आपका यूं सभी ईमेल को आपके यूं चिट्ठियों को। आज हमार दगड़ जगदीश चंद्र पांडे खटीमा उत्तराखंड बटे की जोड़ना छन और बोना छन कि ग्राम जगत कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय छ और ये माँ हमार गढ़वा कुमाऊं और जौनसार की लोक संस्कृति आकाशवाणी देहरादून का माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना काम आपका नाचन हम तय बहुत सुंदर लगत। आप तय बहुत बहुत बधाई।

आपक कार्यक्रम सुन जखमा की ओपी बडोनी से आपन उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन विषय पर बातचीत करी, हम तो सुंदर लगे। और बना चने की हम ते नरेंद्र सिंह नेगी का गीत बहुत पसंद छिन, जो कि आपका श्रोताओं का अनुरोध पर कार्यक्रम में अक्सर सुनाई जन दिन, चाहे वो हमर पसंद हो या चाहे और पसंद, लेकिन हम सुनी दिन अबल। तो बहुत बहुत आभार। और दगड़ में विनीता थपलियाल भी छिन साहब, नी चिट्ठी में यानी एक लिफाफ में दुई चिट्ठी कुचा दी आपन लखना छिन, कार्यक्रम सुंदर चलना छिन। और जितना भी कार्यक्रम हम चाहे वो भैरा का कार्यक्रम मतलब स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम या फिर स्टूडियो का कार्यक्रम सभी पसंद करना छिन। और ग्राम झांकी में पिछला दिनों जो हमने मोरी ब्लॉक को गांव कुटगांव की कहानी सुन और वक्त की झांकी सुन बहुत सुंदर लगी। और सच में बोली भाषा का लिहाज से हमारे उत्तराखंड कतना अनूठो प्रदेश के जखमा बहुत सारी भाषा बोली कुछानी कख कख बिटे के हम तो सुनक मिल देना। और बहुत भलो लगी कि पहली दा ये क्षेत्र यानी मोरी ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र की या जो बोली भाषा छ हम तो सुनक मिली, हम तो बहुत पसंद आया। तो जागृति बिहार नेहरू ग्राम बिटे के इच्छा विनीता थपलियाल की चिट्ठी, तो आप दियो थे बहुत बहुत आभार। और ग्राम झांकी का अलावा देखा हमन आप थे और कुछ भी वे क्षेत्र से जुड़ी, चाहे वो हमारी खैरी हो या स्टूडियो से भैर त्योणी हम आप तलेगा। तो ये तरह से कार्यक्रम आप तक पहुँचाना की हमारी पूरी कोशिश है। और जिनके हम सदन ही बना रहे कि कुछ न कुछ नए कनेक हमारे तजबीज सदन रहें, बस दगड़ आपक चढ़ चिट्ठी आपक चढ़ना छिन, सुझाव आपक चढ़ना छिन और शाबाशी और हौसला तो आप देना छिन हम तय। मनोरमा रावत जी हम तय चिट्ठी सदन के चार ककबटे की विजय पार्क देहरादून बटे के लखना छिन, ग्राम जगत कुटुम्बदरी तय रुमुकदा की सेवा सौली दगड़ियो ध्याने जी का दगड़ी ओपी बडोनी की बातचीत साहसिक पर्यटन पर बहुत सुंदर लगी, मनोरंजक बिछे और सुनी की जिगुड़ी उत्तराखंड की सैर पर पैट गए, वाह। और राज्य की सभी भाषाओं का गीत संगीत और महत्वपूर्ण संदेशों का दगड़ी जो 32 विशेषज्ञ, वाह मैं नहीं हूं साहब दंत रोग विशेषज्ञ तय एक नए नो दियो 32 विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र देवेंद्र सिंह रावत जी छा अपन नो गलत लेख दे उनको उनकी दगड़ बातचीत है पायरिया रोग पर, वो भी बहुत जानकारी प्रद छे। और हम ते भरोस छे कि साहब एथर भी ये तरह का स्वास्थ्य परक कार्यक्रम आप सुनेला। और यह बल एक मिथ या भ्रांति पर जानकारी बहुत बढ़िया लगी कि लेकिन लोग कुछ और ही चितन हूं कुछ और से यहाँ मतलब डॉक्टरी सलाह जरूर चबल। तो मनोरमा जी बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप थे दुया कार्यक्रम पसंद है। और दगड़मा जो आप लिखना चाहें कि साहब कार्यक्रम माहौरी हम तक जानकारी स्वास्थ्य का बाबत मिल ली, बिल्कुल हमारा ओण वाला कार्यक्रमों में आप जरूर ई बात थे सुनला जानला। और डॉक्टर देवेंद्र रावत थे हम बोल दिला कि साहब नए नाम चा बापा को 32 विशेषज्ञ बहुत बोल लगी। तो आभार धन्यवाद जुगराज नया कि आप सदन हमारे दगड़ छिन, हमारे कार्यक्रमों थे सुनना छिन टिपना छिन बिंगना छिन सब कुछ करना छिन और अपने राय हम तक पैटाना छिन, ये का वास्ता बहुत बहुत आभार। आचार्य छिन साहब हमारा इंद्रमणि थपलियाल जी प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड बटके और गांव चू डोंक वाला अंबी वाला ये लिखना चन सदन अपनी लंबी चौड़ी चिट्ठी में कि श्रावण मास के गढ़वाली मास संक्षिप्त रूप से भगवान भोलेनाथ जी को वर्णन करे जान बले। और ये का बाबत कांवड़िया जल ले कंदेन तो कुल मिला सोना बहन बात करें छे बना छन की कुछ ये पर मिन गीत रचना करें छन, तो क्या वो हो सके साहब अमन पहल व्याप्त बता कि अगर गाना शौक छ तो स्वर परीक्षा दिया और वार्ता को और कविताओं का शौक से तो बिल्कुल आप सादर आमंत्रित छिन। और जन के हमने पहले चिट्ठी में भी बताया था आप तक कि हमने आप तक न्यूज चाहे लेकिन आप को जाने कख चल गिन आई नहीं छिन, तो हम उनके कह सकें बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक चिट्ठी हो रिलिंदा ये छिन मीना खुलबे हरिद्वार रोड देहरादून लिखना छिन भेज गया चिट्ठिया फार बर खमाया चो छोड़ी भेजी भाई कि लेके यूं लेखे और जब रू लेखोल तब रू मिजा बुंद पोड़ गिन बरखा के तब यूं एक फोटो खींच और हम तक भेज दिया। लिखना चाहिए कि ग्राम जगत की सरा फुलवारी थे मीना खुलबे की तरफ बटे की बहुत बहुत सेवा सौंधी सुंदर कार्यक्रम चलना छिन। और लिखना चाहिए कि गैरोला जी के दगड़ी भंडारी जी के

दगड़ी और निकिता खंडूड़ी का दगड़ी शिक्षा नीति पर जो संगोष्ठी है वो बहुत ही लाभप्रद है और सभी वर्गों का बात समझ में आया कि चाहे वो विद्यार्थी छन चाहे वो शिक्षक छन, शिक्षा में जो सुधार होने चाहिए वे में क्या भी और गुंजाइश छ, बहुत सुंदर लगे। और बना छन के 7 तारीख में कबूतरी देवी को पुराण गीत सुनी बहुत सुंदर लगी और उनका बारे में आपन जो जानकारी दे वो भी बहुत ही भली छे। तो आभार आपको मीना खुलबे जी कि आपक चिट्ठी हम तक पहुंच और आपन हमारा कार्यक्रम सुनी के ऊपर अपनी राय हम तक लेखिक भेजे, हम तो सुंदर लगे और वो मा इतना ही ना बल्कि आपन देखा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमन जो प्रस्तुत करी जो कुमाऊनी लोक गायिका छे कपूत्री देवी ऊपर जब हमन वो जानकारी दे तो सच में एक महान लोक गायक थे। हम इन संस्था का लोक छो जो कि कला संस्कृति संगीत साहित्य ये माँ कुछ न कुछ अपन योगदान करण वाला लोग होते सदन याद रखत कि वही तो छन हमारी धरोहर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तय परिचर्चा भी भली लगी और उम्मीद करना कि अग्नि भी आपक चिट्ठी पत्री हम तय मिलनी रहे। ठीक छे साहब, तो अब इन करना कि जरे से घड़े एक विषय लेना और कुछ और चिट्ठी और एतवार का जो भयबंध छे ना हमारा एतवार का भयबंध ना है एतवार दिन जो भयबंध हम तक चिट्ठी भेज देना उनकी चिट्ठी तो लेके घड़े एक माँ फिर ये चिट्ठी पत्रिका अंक माँ उपस्थित होला। बीच में जो हमारी परंपरा चाहिए एक पुराण गीत हम आप तक सुनाना, तो आज एक बहुत पुराण गड़बड़ी सैद वाली आपन सुन ची कभी सैद वाली तो एक सैद वाली हम आप तक सुनाना छुआ केशव अनुरागी का स्वर में। ये जो हमारी गीत परंपरा च वे माँ सैदवाली की भी एक अलग शैली च वे माँ गयू यो गीत आप जरूर सुना। ये गीत की रिकॉर्डिंग 27 अगस्त 1984 में आकाशवाणी नजीबाबाद में करे गया छा। तो लिया सुना केशव अनुरागी का स्वर में यो गड़वली सैदवाली।

ढोल सागर का जनगुरु और अलग अंदाज का ये लोक गायक केशव अनुरागी छे जो उनका स्वर में अभी आपन सुन सेद वाली श्रोता भेबंदो। अब एतवार दिन जो भेबंदो नाम तक चिट्ठी पैटे उनते धन्यवाद बोलला। विजय कार की देहरादून बिटकी, अंकित चौहान, पीतांबर सिंह चौहान भी देहरादून बिटकी, पृथ्वी शर्मा देहरादून बिटकी, और सिद्धि रावत, जगदीश चंद्र पांडे।

हमारा खटीमा का श्रोता चुन मंजूर आवत 107 चंद्रनगर देहरादून बटी के बहुत बहुत आभार आपको भाई कि आप देहरादून का सुन दरा हमारे दगड़ जुड़ना चन बहुत लगद ये देहरादून में भी हम सुने जाना चुन और लोग हम तो सुनना चन केला नहीं सुनिए हमारे अपनी बोली भाषा को यो कार्यक्रम च अपनो लोक संगीत को यो कार्यक्रम च और अपनी माटी को यो कार्यक्रम च भाई। तो जब जब हम ग्राम जगत कार्यक्रम सुनदा सर हम तो पहाड़ की याद आन और अजगाल तो हो रही ज्यादा खिले की बरखा होनी चाहिए और कोई अड़ी लौकी रहने देना बहुत लगद गैस भी लग दिन कहो कह बत। तो अगर देहरादून में भी कखी चो छोड़ी हम देखदा ना यख यो ऐच डांडियों में कोई और लग्यू तो सर हम तो घोर की याद आंच। तो साहब यो आपके वही खुद थे बेलमोणा के कार्यक्रम च जो एक नौ च ग्राम जगत सुनना रहा और हम तो चिट्ठी लिखना रहा हमारे पता च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। एक अलावा हाथ तक लिखी चिट्ठी भी आप हम तक पैठा सकते हैं हमारे पता च चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001। तो अब है एक दा फिर आप लोगों की चिट्ठी पत्रियों को झोला लेके फिर उपस्थित हो लो। तो आप अपन ध्यान रखा हम तक चिट्ठी भेजना रहा और सुनना रहा कार्यक्रम ग्राम जगत।

मैं बनो चिट्ठी पत्रियों को अंक अभी आपन सुने और भी सुंदरों से अनुरोध कि आप भी चिट्ठी लिख कर जरूर भिजिया और कार्यक्रम का बारे में आपन जरूर लिखो। मैं बनो हमारे उत्तराखंड के कई उत्पाद होते हैं जीआई टैग दिए गया। जीआई टैग का कोनो जो फुल फॉर्म होंगे वो एक फुल फॉर्म जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोले जान। कई भी विशेष जगह व विशिष्ट उत्पाद हैं कानूनी संरक्षण दीन वाला प्रमाण पत्र गुणों जीआई टैग बोले जान। जैसे यूं उत्पादों थे एक सही पहचान मिल दी और कोई यूं की नकल भी नहीं कर सकत और जीआई टैग से देश विदेशों में यूं नाम भी हों। यूं टैग कृषि उत्पाद हस्तशिल्प और खान वाला चीज वस्तु और विनिर्मित चीज वस्तुओं थे दिए जान। हमारे उत्तराखंड सबसे पहली तेज पत्ते थे जीआई टैग दिए गए थे। फिर मरसू क्वादू झंगवरू और बुरासक शरबत हो गया बेड़ू कुमाऊं का पिछोड़ा चमोली का रमा मुखोटा और बदरी गोड़ी का घी कुमाऊं का ऐपण कला भोटिया जनजातियों का थुलमा और लकड़ों की नक्काशी जो तिवरी माँ होना लगभग इन्हीं उत्तराखंड के 29 उत्पादों थे जीआई टैग दिए गए। यह हमकुने की गर्व की बात और भविष्य में और उत्पादों थे भी यू टैग दिए जाल इन पूरी उम्मीद। और अब कार्यक्रम थे अग्नि सरकंदा और चलदा कुमाऊं छुआड़ और सुनदा गोकुल सिंह बिष्ट व दगड़ियों का गई कुमाऊनी लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: गोकुल सिंह बिष्ट व दगड़ियों का गीत अभी आपन सुनो और दगड़ में सुने रेवार। आप देखना वेली कि लगातार भूजल स्तर घटने लगी, पानी भी लगातार कमी होने लगी। भूजल स्तर बढ़ान और पानी का सही उपयोग से हम ई कमी थे दूर कर सक दिया। जनकि पानी का सबसे बड़ा स्रोत बरखा, और बरखा के पानी थे जमा करी इकट्ठा करी के घर कामों में, खेती कामों में उपयोग कर सकता। और यन व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी धरती में समे जा, जैसे कि आज कि भूजल स्तर बढ़ जा। घरों की छतों में बरखा के पानी को टैंकों में इकट्ठा करण चाहिए, रिचार्ज पिट बने के पानी थे जमीन में पहुँचा चाहिए। चेक डैम चाला खाला बने के पानी इकट्ठा करण और डाला बूटा लगाण और उन्हें बचाण बिच। बेबंदो इन्नी छोटा मोटा कोशिश करी के हम भू जल स्तर ते बढ़े सकते और आने वाली पीढ़ियों को पानी सुरक्षित कर सकता। हमारे घर गाँव पर भी जब पानी कमी होना आप लोगों देखवाल की देख के वाल आप लोगों करी वाल जो घर गाँव पर

ना बांस डंडों नो पानी जमा करना कोनो पणतल बनाया रहन, जैसे बंदरी का पानी सीधा वो डंडा मजे का ना, और जग टंकी रहन या फिर पानी का होज बनाया रहन, जग पानी का इकट्ठा करना की सुविधा छ, उको सीधा चल जान दे, एक भी फालतू बूंद नि जाए। और ये पानी का उपयोग महीनों तक हो, 4-6 महीना तक तो पानी कुछ नहीं बिगड़ दो। हाँ, टंकी का साफ सफाई जरूरी चाहिए, आंदे साफ करी कन रख दे और पैन भोरी कन महीनों तक चलाना रहा। और भाई बंदो अब इन करदा कि कार्यक्रम त्याग ने सर करना और जल्दा जौन सारा छुआड़ सुनदा रविंद्र वर्मा का गयु जौन सारी लोकगीत।

0: मैं बंदो रविंद्र वर्मा का गयो जौन सारी लोक गीत अभ्यापन सुनो और अब घड़ेक माँ सुनदा उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। नीति आयोग के सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने उत्तराखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, आपातकालीन और ट्रामा सेवाओं को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया। पतंजलि और एम्स ऋषिकेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा पर होगा संयुक्त शोध। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे जत्थे का पिथौरागढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। श्रद्धालु कल गुंजी के लिए रवाना होंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम अनुपात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित रूप से शिविर लगाने के निर्देश दिए। राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने बैंकों से आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों तक ऋण की पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया।
3: बैंक राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था है, रोजगार है, वित्तीय समावेशन है और निवेश और उद्योग और राज्य का राजस्व, इन सभी की वृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं कहूं कि हर विकास की दृष्टि में योगदान होता है। हमारे राज्य के अंदर बैंकों के सहयोग से काफी सारे MSME सेक्टर में काफी अच्छा काम हुआ है, होम स्टे के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है और कुछ जनपदों में जरूर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा है कि वहां पर रोजगार का सृजन हो, महिलाओं को प्राथमिकता पर रख के काम हो, उनको ऋण उपलब्ध आसानी से हो जाए, केवल दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण से वो किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहें। और हमारी प्राथमिकता है कि हमारी मातृशक्ति महिलाएं हमारी आगे आएं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, स्टार्टअप है, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए कहा है और बैंक भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करेंगे।
2: नीति आयोग के सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने आज लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉ श्रीनिवास ने स्वास्थ्य सेवाओं, सतत विकास लक्ष्यों और आयुष क्षेत्र को सशक्त बनाने संबंधी अपने सुझाव रखे। उन्होंने उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाओं को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया।

0: राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जन कल्याण से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास जारी रहेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में नीति आयोग का सदैव सकारात्मक सहयोग मिला है और भविष्य में भी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग मिलता रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: अभी जो आने वाले समय में अगले 6-7 दिन का जो फोरकास्ट अगर देखा जाए तो अधिकांश स्थानों पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी लगभग सभी जनपदों में। जो वार्निंग अभी जारी की है इसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जो है मैदानी इलाके हैं खासतौर से और उनसे लगे हुए जनपद जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, इसके अलावा नैनीताल और चंपावत खासतौर से। उसके बाद बाकी जनपद में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है बाकी सारे वहाँ पे और वहाँ भी ऑरेंज अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए।
0: इस बीच राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को एक मंच पर लाने की दिशा में एक अभिनव पहल हुई है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान, पतंजलि विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के बीच क्लिनिकल रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: समझौते के तहत तीनों संस्थान मिलकर क्लिनिकल अध्ययन, वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक सहयोग और स्वास्थ्य विज्ञान में नवाचार पर काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा की संयुक्त क्षमताओं का उपयोग कर रोगियों के लिए साक्ष्य आधारित उपचार विकसित करना है। पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त क्लिनिकल अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से जन स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रभावी समाधान दिए जा सकेंगे। एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान के बीच वैज्ञानिक संवाद वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह समझौता क्लिनिकल रिसर्च, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त अनुसंधान से ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण मिलेंगे जो रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे जत्थे का आज पिथौरागढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी ने कहा कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह दल गुंजी के लिए रवाना होगा।
3: इस दल में कुल 47 यात्री हैं जो कि भारत के 12 राज्यों से सम्मिलित हैं और सभी यात्रियों का जो आज जिला प्रशासन द्वारा यहां स्वागत किया गया है केएमवीएन माओलका देवी में। ये यात्री यहां से धारचूला के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जो है आगे कल गुंजी के लिए रवाना होते हुए लिपु लेक दर्रा क्रॉस करके तिब्बत में प्रवेश करेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर जो है अगले 10 दिन के अंदर वापिस यहाँ पर पहुंचेंगे।
0: वहीं श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की।
4: ऐसा लग रहा है कि जैसे 5-स्टार होटल में आ रहे, कोई चीजों की कमी नहीं रखी, टॉप नॉट सारी चीजें, बहुत ही सुविधा पूर्वक हमें यात्रा करवाई जा रही है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो कहीं पे भी नहीं होती। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हूं मेहसाणा गुजरात से, बट मैं रहता मेलबर्न में हूं। मैंने वहां से अप्लाई किया था और महादेव का बुलावा आ गया तो मैं वहां से फिर यहां पे आ गया अभी यात्रा के लिए।
0: नगर निगम देहरादून ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का गृह कर वसूला है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि गृह कर वसूली को लेकर नगर निगम बड़े बकायेदारों

0: के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि बकायेदारों को नोटिस के साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर जमा करने के संदेश भेजे जा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ से जो है नोटिस वगैरह वो हमारे बकायेदारों को जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लगातार जो है उनको मैसेज भेजते रहते हैं समय समय पर। और इस बार हमने रिकॉर्ड 72 करोड़ रुपए का हमने जो टैक्स है वसूला है इन्हीं सब माध्यमों से, और निश्चित तौर पे आगे हम और ज्यादा वसूली इस पर कर पाएंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम श्रीनिवास ने उत्तराखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, आपातकालीन व ट्रॉमा सेवाओं को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया। पतंजलि और एम्स ऋषिकेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा पर होगा संयुक्त शोध। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे जत्थे का पिथौरागढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। श्रद्धालु कल गुंजी के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से आप सभी को कार्यक्रम का दूसर पाले में स्वागत छ। मैं मनोमी छो मीना उन्याल और उम्मीद करना छो कि म्यादा गर्जन हमारे सभ्य सुनदर अभिबंदो आप कार्यक्रम थे अग्नि सरकंदा और सुनदा मणिलाल जयरवाण का गयु गढ़वाली लोकगीत।

मैं मतलब मणिलाल जयरण का गयो अभी आपन सुनियो गढ़वाल लोकगीत। आजकल चौमासो में बरखा को पता नहीं लग दो, वह बारी बिद्दू वह बारी बरखा, खास कर एक देहरादून में। अगर जोगी वाला में बरखा होनी चे तो रिस्पना में बिद्दू हुई, धर्मपुर में बरखा होनी तो अग्नि बाजार राजपुर रोड में बिद्दू। मतलब बुना मतलब ये हो चु कि बरखा को कोई पता ही नहीं लगो तो जब भी घर बेटे बाहर निकलिया आप गढ़ मोम जाम छाता या फिर आजकल मोम जामा कुंड बोलता ना रेनकोट, मोम जाम तो गैप आप गढ़ जरूर ले जाना, जैसे कभी भी बरखा तो वह था ओढ़ दिया। और एक खास बात ये हो चु कि आजकल सड़कों में जगह जगह खजला हुआ छन, खड्डा हुआ छन और बरखों में पानी भरे छन और दिखा दिनी है। तो देखभाल कर गाड़ी चलाण और पैदल हिटन वालों से भी अनुरोध है कि किनर किनर जान, और गाड़ी चलाण वालों से चाहे वो दुपहिया च या फिर चौपहिया देखभाल कर गाड़ी चलाण, क्योंकि आजकल यूँ दुर्घटना यूँ खजलों कारण बिंडी होना और जो पैदल चलने वाले छन वो माँ छिड़का भी नहीं जा, इन तरीक़े से गाड़ी चलाण मतलब सावधानी पूर्वक। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत गोपाल बाबू गोस्वामी का स्वरमा आप तक सुनना लग्या छा।

गोपाल बाबू स्वामी गोपाल का गयू अभ्यापन सुन यू कुमावनी लोगी तो और अब कार्यक्रम बटवन का भगत हुए अपना व अपने कुटिंद्र का ख्याल रखिया और मिथे यानी मीनव ने आल थे दिया आज्ञा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब वक्त है गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सरिता भट्ट। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड देश को छठो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित। साक्षरता दर 98.7% पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करी। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत दूरस्थ गांवों तक पहुंची शासन प्रशासन। बड़ी संख्या में लोगों से मिलन जो सरकारी योजनाओं को लाभ। और प्रदेश का 7 जिलों में अगला 24 घंटों का दौरान ज्यादा से बहुत ज्यादा बरखा को रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड ने शिक्षा का क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर पूर्ण साक्षर राज्य को दर्जा प्राप्त करिया ले। केंद्र सरकार का उल्लास कार्यक्रम का तहत राज्य ने 98.7% साक्षरता दर हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त करी। केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों थे पूरा करने का बाद राज्यपाल ने उत्तराखंड थे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करी। इसे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम थे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करे जा चुक्यू च। अब उत्तराखंड भी इन सूची में शामिल हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ थे राज्य खुणे ऐतिहासिक उपलब्धियां बतान बोली कि यह सरकार को सतत प्रयासों और जन भागीदारियों को परिणाम च। उन बोली कि राज्य सरकार डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा और जीवनोपयोगी कौशल प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाण खुणे प्रतिबद्ध च। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावतन बोली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुरूप प्रत्येक नागरिक थे गुणवत्तापूर्ण और आजीवन शिक्षा उपलब्ध कराण खुणे सरकार राज्य सरकार लगातार काम करनी च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करी। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम अनुपात पर नाराजगी व्यक्त कर नियमित रूप शिविर लगाने का निर्देश दिन। राज्य का आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका थे महत्वपूर्ण बतांद मुख्यमंत्री ने बैंकों से आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों तक ऋण की पहुंच आसान बनाने पर जोर दे।
2: बैंक राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था है, रोजगार है, वित्तीय समावेशन है और निवेश और उद्योग और राज्य का राजस्व, इन सभी की वृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं कहूँ

0: भी हर विकास की दृष्टि में योगदान होता है। हमारे राज्य के अंदर बैंकों के सहयोग से काफी सारे एमएसएमई सेक्टर में काफी अच्छा काम हुआ है, होम स्टे के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है, और कुछ जनपदों में जरूर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा है कि वहाँ पर रोजगार का सृजन हो, महिलाओं को प्राथमिकता पर रख के काम हो, उनको ऋण उपलब्ध आसानी से हो जाए, केवल दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण से वो किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहें, और हमारी प्राथमिकता है कि हमारी मातृशक्ति महिलाएं हमारी आगे आएं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, स्टार्टअप है, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए कहा है और बैंक भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करेंगे।
1: उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाला ने पौड़ी जिला का कोरदार स्थित नारी पुनर्वास केंद्र को औचक निरीक्षण कर वक्त की व्यवस्थाओं को जायजा लिया। ये दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त कर बोली कि पुनर्वास केंद्र महिलाओं थे सुरक्षित वातावरण का दगड़ी आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी उपलब्ध कराने च। उन्होंने बताया कि केंद्र से पूर्व माँ आश्रित रही एक मेधावी युवती वर्तमान माँ बीटेक की पढ़ाई करनी च, जो केंद्र का सकारात्मक प्रयासों को उदाहरण च। अध्यक्ष ने केंद्र माँ रैणी महिलाओं और युवतियों से संवाद भी करी तथा संबंधित अधिकारियों थे महिलाओं की सुविधा खुणे आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराना का निर्देश दिन। हरिद्वार जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पुरकाजी लक्सर हरिद्वार का चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों थे गति दीण खुणे हरिद्वार और लक्सर तहसील का 23 प्रभावित गांवों में भूमि संबंधी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई आली। जारी आदेश के अनुसार यूं गांवों में अब कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन, भूमि की खरीद फरोख्त रजिस्ट्री बैनाम और भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगाया गया।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का तहत प्रदेश की विभिन्न जिलों में बहुउद्देश्यीय जन सेवा शिविर जन जागरूकता कार्यक्रम और विकास प्रदर्शनी को व्यापक आयोजन करे जाणो छ। यूं शिविरों का माध्यम से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित कर हजारों नागरिकों तक विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं को लाभ दिए जाणो छ। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश भर में होना यूं शिविरों में प्राप्त जन समस्या और शिकायतों की बड़ी संख्या में मौका पर ही निस्तारण करे जानु छे, जबकि बचा मामलों की समयबद्ध निस्तारण की कार्यवाही करे जानी छे। यूं शिविरों में अब तक 5,300 से ज्यादा लोगों ने सहभागिता कैरी, जबकि 4,470 से अधिक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को लाभ दिए गए। शिविरों में मिले 415 शिकायतों में से 180 से अधिक मामलों को मौका पर ही निस्तारण करे गए, जबकि अन्य मामलों की समयबद्ध कार्रवाई खुणी संबंधित विभागों को भेजे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में बोली कि राज्य सरकार को उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक सुशासन और जन सेवा की पहुंच सुनिश्चित करण छे। उन बोली कि जन सेवा शिविरों का माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवा उपलब्ध कराई जानी छन, जैसे लोगों को समय आन जान और पैसे की भी बचत होनी छे, ये साथ ही समस्याओं को त्वरित समाधान भी मिलनो छे। उन बोली कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं को लाभ पहुंचाउन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का विभिन्न जिलों में ज्यादा बरखा की चेतावनी दी च। विभाग ने अगले 24 घंटों का दौरान देहरादून टिहरी पौड़ी हरिद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल और चंपावत जिलों में कखी कखी ज्यादा से बहुत ज्यादा बरखा को रेड अलर्ट जारी करू च। ये देखते आज राज्य का कुछ जिलों में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहनी। ये बीच राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का अधिकांश जिलों में रुकी रुकी के बरखा का दौर जारी छिन। बरखा और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुई उच्च। वखी आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों थे कै भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटन खुणे 24 घंटा सतर्कता बरतना का निर्देश दीन। उन प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों को गंभीरता से पालन करने की अपील भी करी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा जत्था को आज पिथौरागढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन ने पारंपरिक स्वागत करी। जत्था में देश का विभिन्न राज्यों का 47 श्रद्धालु शामिल छिन्न। ये अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी

0: दिए जाने वाली सुविधा और सुरक्षा खुणे केंद्र और राज्य सरकार की सराहना करी।
1: ऐसा लग रहा है कि जैसे 5-स्टार होटल में आ रहे, कोई चीजों की कमी नहीं रखी, टॉप नॉट सारी चीजें, बहुत ही सुविधा पूर्वक हमें यात्रा करवाई जा रही है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो कहीं पे भी नहीं होती। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हूं मेहसाणा गुजरात से, बट मैं रहता मेलबर्न में हूं। मैंने वहां से अप्लाई किया था और महादेव का बुलावा आ गया, तो मैं वहां से फिर यहाँ पे आ गया अभी यात्रा के लिए।
0: आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। उत्तराखंड देश को छठो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, साक्षरता दर 98.7% पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का तहत दूरस्थ गांवों तक पहुंची शासन प्रशासन। बड़ी संख्या में लोगों थे मिलन जो सरकारी योजनाओं को लाभ। और प्रदेश का 7 जिलों में अगला 24 घंटों का दौरान ज्यादा से बहुत ज्यादा बरखा को रेड अलर्ट। ये कदगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार साथियों, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं देहरादून केंद्र से कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज मैं धनंजय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बरसात का मौसम में खेतों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जल की निकासी अगर अच्छी होगी तो जल भराव नहीं होगा, और जल भराव नहीं होगा तो हमारे खेत में जो फसलें खड़ी है वो ख़राब होने से बच जाएंगी। इसलिए जो खेत का ढाल है वो एक समतल होना चाहिए और ढाल एक ही तरफ होना चाहिए, ताकि जिससे पानी आराम से बाहर निकल जाए और खेतों में फोन खड़ी हुई फसलों को नुकसान ना हो पाए। चलिए साथियों, ऐसी कार्यक्रम में बातें चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: हम हमेशा यही कहते हैं कि उन्नत बीजों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है, पर उस अधिक उत्पादन के लिए हमें कुछ कृषि तकनीकों पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें सबसे पहले तो सही बीजों का चुनाव आता है, और वो हमें अपने क्षेत्र की जलवायु को देखते हुए ही करनी चाहिए। हमें बीजों को बुआई से पहले फफूंदीनाशक या जैव उर्वरक से उपचारित जरूर करना चाहिए। ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग सिंचाई के लिए बेहतर होता है। हर फसल से हमें अधिक उत्पादन तभी मिल सकता है जब हम उसमें उचित और बेहतर सिंचाई के साथ खरपतवार का नियंत्रण भी वक्त वक्त पर करते रहें, क्योंकि खरपतवार फसल का पोषण पूरी तरह से फसल को नहीं मिलता। जो खरपतवार होते हैं वो पोषण कुछ अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसल को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए हमें फसल का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, जिससे हमें फसल का पता चलता रहे कि अगर उसमें कोई उपचार या कोई रोग है तो उसे हम वक्त पर उपचारित कर लें। चलिए साथियों, अपने कार्यक्रम में सुनते हैं एक वार्ता डॉक्टर SP सिंह से बरसात में सब्जी वर्गीय फसल में समसामयिक कार्य पर।
2: किसान भाइयों, इस समय वर्षा काल प्रारंभ हो गया है और इससे सब्जी वाली फसलें ये बहुत संवेदनशील होती हैं, और इन पे बड़ा विपरीत प्रभाव, अगर बारिश का पानी अधिक हो गया है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो किसान भाइयों को कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, उसकी जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कुछ सब्जियों की

0: बुआई हो चुकी होगी मैदानी क्षेत्रों में कर दी गई है। और इस समय अगर आप देखें तो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं मुख्य प्रमुख रूप से किसानों द्वारा बोई जा चुकी हैं, फलत लग चुकी है। और इसके अलावा भिंडी की खेती पहले भी की जा चुकी है और इसमें वर्षा काल की भिंडी लोगों ने बो दी गई है। और भिंडी जो है वर्षा काल में बहुत सारे कीड़ों से और व्याधियों से प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कि पीला रोग लगता है जिसे मोजेक हम लोग कहते हैं। इसी तरह आजकल मिर्ची की खेती किसानों द्वारा हो रही है, अक्सर शिकायत आती है कि पत्तियां छोटी हो गई हैं और हमारा उत्पादन नहीं हो रहा, फूल झड़ रहे हैं, फूल कम लग रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें मोजेक भी रहता है और उसमें आपका लीव कर्ल एक समस्या रहती है। इसके अलावा भिंडी में आप देखें फल छेदक कीट होता है और बैंगन की फसल तो बड़ी स्थिति है। और किसानों के पास एक मौका है कि अपनी सफल खेती करें, स्वस्थ खेती करें, तो इसमें आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं पहले मैदानी क्षेत्रों की बात करता हूँ। अब मैंने कहा है कि भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी खेती की जा रही है और इस समय खड़ी है। इसके अलावा बैंगन, टमाटर, मिर्च भी इस समय उत्पादित की जा रही है, लेकिन इनमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कहा मोजेक समस्या है, लीफ कर्ल समस्या है, बैक्टीरियल विल्ट जिसमें पौधा हरा दिखता है लेकिन एक दो दिन के भीतर ही पौधा झुलस करके गिर जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फल छेदक कीट कई सब्जियों में लगता है। और इस समय मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह वातावरण बड़ा अनुकूल है, गर्म वातावरण है और आर्द्रता बहुत ज़्यादा है वातावरण में, 100% है, 90% है। इसकी वजह से एक कीड़ा आता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है, इसका भी रोकथाम आपको करना पड़ेगा। साथ में माऊ, ये भी समस्या विभिन्न फसलों में लगता है। इन कीटों में रोगों का निदान विशेष आपके द्वारा किया जाना है, और सभी जानकारियां यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। मोटी मोटी जानकारी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में जो हमारे उद्यान सचल दल हैं, कृषि विभाग हैं, विश्वविद्यालय के केंद्र हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर स्थापित हैं, और नज़दीकी विश्वविद्यालय पन्नाकर विश्वविद्यालय नज़दीक है, रानीचोरी में एक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, वहाँ से आपको समय समय पर फ़ोन के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क करके इन कीटों के और व्याधियों के नियंत्रण हेतु लगातार संपर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी खेती सफल हो पाएगी। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आज की तारीख में हम कहते हैं कि जैविक खेती की बात होती है, और हमारा वो उत्तराखंड जो प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यही कहा जाता है कि जैविक खेती की बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी रसायन आप चुने उसको मानव को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको चुनाव होना चाहिए। ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए जिससे तुरंत कीड़े मर जाएं, व्याधि खत्म हो जाए, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आदमियों पर पड़े। इन चीज़ों का ज्ञान आपको वैज्ञानिकों से ही प्राप्त हो सकता है। दुकानदार तो अपनी दवाई बेचेगा, आपको फायदा भी नज़र आएगा, लेकिन बाद में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, नदी नाले के अड़ोस पड़ोस आपकी खेती हो रही है, पानी प्रदूषित होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर करने की बातें हैं और आपको इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अभी किसानों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इस समय मैं भिंडी की बात करना चाहूँगा। भिंडी में आपने पीला रोग की मैंने बात कही है, आप देखते हो उनकी जो नसें होती हैं हरी रहती हैं और पत्ता जो बीच वाला हिस्सा होता है वो पीला पड़ा हुआ होता है। इसमें सफ़ेद मक्खी का नाम मैंने कहा है कि सफ़ेद मक्खी इसको प्रभावित करती है। इसके अलावा जो भी जूस रस चूसने वाले कीट होते हैं, माओ होता है, लीफ होपर होता है, इसका भी ये रस चूसते हैं। और एक एक वायरस, जैसे हम कहते हैं आजकल वायरस की बीमारी आदमी में होती है, उसी तरह पेड़ पौधों में भी वायरस की बीमारी होती है, इससे पीलापन आता है। पेड़ अगर आप देखेंगे, मिर्च में मैं बता रहा था पत्तियां छोटी पड़ जाती हैं, तो ये वायरस रोग बहुत फैलता है जब नमी ज़्यादा होती है, तापक्रम अधिक होता है। इसके लिए आपको जो है दवाई छिड़कनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, अगर पौधा आपका फलत अवस्था में है तो पहले फसल की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई कर दें, उसके बाद किसी भी रसायन का छिड़काव करें। जब रसायन का छिड़काव हो जाए तो एक हफ्ते के बाद ही फल तोड़ें। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आदमियों को इसका प्रभाव नहीं पड़े। इस समय बाजार में बड़ी बड़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, सरल उपलब्ध हो जाता है। इमिडा क्लोरोप्रिट एक दवाई है, इस घोल के रूप में दवाई है। आपको 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में छिड़कना है। इमिडा क्लोरोपिड दवाई का नाम पुनः कह रहा हूँ मैं। इसको आप 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डालनी है और इसका छिड़काव आप पौधे में कर लें, चाहे वो मिर्च का पौधा हो, चाहे टमाटर का पौधा हो, चाहे बैंगन का पौधा, अगर माहों की समस्या, सफ़ेद मक्खी की समस्या हो, इसका छिड़काव आप अवश्य करें। इससे आप जो भी रस चूसने वाले कीड़े होंगे सभी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर दोबारा जो है कीट का प्रकोप होगा 8-10 दिन, 15-20 दिन के बाद, तो आपको दोबारा सचेत रहना पड़ेगा और इसके अनुसार इस इमिडा क्लोरोपिड दवाई का छिड़काव आपको करना पड़ेगा। आजकल आप देखें जैविक खेती की बात हो रही है, नीम की गिरी का तेल
1: बेबाज

0: में उपलब्ध है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कीड़े को मारता नहीं है, कीड़े को दूर रखता है। ये ध्यान आपको रखना है, नीम का तेल अगर हम छिड़काव करते हैं ये कीट को दूर दूर रखने में मदद करेगा हमारी सब्जी की फसलों में, लेकिन कीट को मारेगा नहीं। ये भी एक है कि कैसे दूर रखा जाए, तो नीम गिरी का तेल अगर 3 से 4 मिलीलीटर तेल आप 1 लीटर पानी में घोलें और उसका छिड़काव करें। हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी कोई दवाई गिरे या नीम का तेल के छिड़काव करें, ये ध्यान रखें बरसात का मौसम है, छिड़काव आप दिन के समय करें, मौसम खुला होना चाहिए। अगर वर्षा हो गई है, होने की संभावना है, बिल्कुल भी छिड़काव न करें, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। एक और ध्यान रखें, क्योंकि दवाई का असर लंबे समय तक रखना है, तो थोड़ा सी सर्फ का पाउडर उपलब्ध होता है, एक बाल्टी या एक जो 15 लीटर की टंकी आपकी है, एक चूटी अगर सर्फ का घोल सर्फ को उसमें डालें और घोल दें, तो दवाई का असर पत्तों पे लंबे समय तक रहता है, कब कुछ काफ़ी देर तक रहता है। ये भी आप ध्यान रखें कि ताकि आपका दवाइयाँ बहुत महंगी है, इसलिए आप दवाई को सही समय पर डालें, सही मात्रा में डालें और इसके लिए सर्फ का उपयोग करें। वैसे तो दूसरे चीज़ें भी होते हैं, टी पॉल होता है, कई चीज़ें होती हैं, उनको आप डाल सकते हैं, इसको आप डालेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये भी मैं कहूँगा कि जो अगर बोरर जिसे फल छेदक कहते हैं, चाहे किसी भी सब्जी की फसल में लग रहा है, उसके लिए एक दवाई उपलब्ध होती है कार्बेरिल, उसके लिए आप छिड़काव से, ये भी दिन में ही होना है, रात को कोई दवाई नहीं होगी, शाम के टाइम कोई दवाई का छिड़काव नहीं होगा। कार्बेरिल इसकी 0.2% मात्रा आप घोलें, मतलब 15 लीटर जो पानी की टंकी है इसमें 30 ग्राम दवा आप घोलें, इससे जो फल छेदक कीट होते हैं इनको हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई और है साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन इसकी भी आप 0.2% घोल, यानी ये पानी वाली दवाई है, इसको 30 ml दवा या 25 से 30 ml दवा 15 लीटर पानी में घोलें तो आपके जो भी फल छेदक कीट होंगे इसको मारने में सहायक होंगे। अभी मैं बताना चाहूँगा कि खड़ी फसल में टमाटर भी हैं, कुछ क्षेत्रों में टमाटर भी है और पहाड़ों में बिल्कुल है। मिर्च मिर्च आपका सभी लोग इस समय उपलब्ध है, मोजे की समस्या मैंने आपको बता दी है, तो इनका रोकथाम होना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैंने कहा था कि आप नीम का रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, नीम जो आपकी तेल गिरी जो होती है उसका तेल होता है, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्बेरिल और एक दवाई और है डेल्टा मेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन अगर जो छेद करने वाले हैं, इसकी 10 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में या 15 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में, एक जो हमारी मशीन होती है उसमें आप डालेंगे तो सुनिश्चित आपको फायदा होगा। एक चीज़ मैं और बताना, जो बहुत बहुत बड़ी काम की चीज़ है, वह है फलत अच्छे लगे, लौकी हो, कद्दू हो, इन चीज़ों के लिए आप जो है आजकल इस फल मक्खी का रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जैसे जो जिसमें फल लगा होता है उसका फूल होता है, और एक ऐसा होता है कि जैसे तुरई हो, चाहे लौकी हो, चाहे कोई भी चीज़ कद्दू हैं, तो फल वाला फूल अलग होता है और जो मादा नर फल होता है वो फूल होता है वो अलग होता है। तो आपको ये देखना है, इसको थोड़ा कीड़ा मारना बड़ा मुश्किल होता है। जब फूल खिलता है उसी अवस्था में ये फल मक्खी वहाँ अंडे देती है फूल के अंदर, और 2-3 दिनों के भीतर उसके अंदर सूढ़ी पैदा हो जाती है। ये सूढ़ी अगर फल के अंदर घुस गई है तो ये आपके फल को सड़ा देती है, चाहे टमाटर हो चाहे जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। इसका ध्यान में कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप दवाई से सही इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे मेलाथियन दवाई उपलब्ध होती है, इसको आप डाल सकते हैं, इसका छिड़काव अगर आप 0.15% का घोल बनाएं तो आप इसका कुछ सीमित मात्रा में आप छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और बताना चाहूँगा कि आजकल जैविक विधि है, फेरोमोन ट्रैप आते हैं खेतों में लगाते हैं, आप वैज्ञानिक से मिल सकते हैं या जो हमारे कृषि रक्षा इकाई केंद्र हैं वहाँ पे कहें कि फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, ये अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग होते हैं। इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का जो कद्दू भर गया फल मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध होते हैं, बाजार में उपलब्ध होता है, उस ट्रैप के अंदर एक डंडी होती है, उसमें एक डिब्बा होता है, कीड़े उसमें इकट्ठे होते हैं, मादा विशेषकर, क्योंकि मादा ही अंडा देती हैं, उसके अंदर इकट्ठे होते हैं, तो उसके अंदर एक लेयर होता है, वो बना रहता है, रेडीमेड रहता है, इस लेयर को लगा दें फल मक्के के लिए आप लगाएंगे फेरोमोन ट्रैप में, तो कीड़े उसके अंदर आकर्षित होते हैं, वो कीड़े रात को आते हैं, दिन में आते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं। उन कीड़ों को निकाल करके आप तेल या रसायन में डाल करके अगले दिन आप डाल देंगे तो कीड़े खत्म हो जाएंगे। इससे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, चाहे लौकी हो कद्दू भर के सब्जियों में। इस फल मक्खी को मारना बहुत आवश्यक है। मेरा अपना ये भी तजुर्बा है, अगर किसान भाई इसको ध्यान से सुने, कि मैंने कहा मादा फल फूल अलग होता है और नर फूल अलग होता है। जिस दिन फूल खिल रहा होगा, लौकी का फूल शाम को खिलता है, बाकी सभी चीज़ों के करीब करीब, तुरई में भी दो प्रकार की तुरई होती है, एक धारीदार तुरई होती है और एक चिकनी तुरई होती है। चिकनी तुरई दिन में फूल देती है, सुबह के टाइम फूल देती है, लेकिन जो धारी वाली तुरई होती है वो शाम के टाइम खिलती है। लौकी भी शाम के टाइम खिलती है और पूरी रात खिली रहती है। अगर आप ये काम कर सकते हैं कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, जो मधुमक्खियाँ हैं या भंवरे हैं कम दिखते हैं, कम चलते हैं, अगर बारिश हो रही तो नहीं चलेंगे, तो अगर परागण नहीं होगा, क्योंकि इसमें मादा और नर दोनों फूल अलग अलग होते हैं, तो परागण की समस्या बनी रहती है। इसलिए अगर आप स्वयं, आपकी खेती बड़ी सीमित है, शाम को फूल खिल रहे हैं 5 बजे 6 बजे, तो आप खेत में जाएं और नर का जो पराग है उसको मादा फूल में अगर आप डालेंगे तो आपका जो है, आप स्वयं हाथों से आपको फलत बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखना है, इस फूल को आप रहने दें, परागण करने के बाद आप रहने दें और 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे उसका जो फल के ऊपर फूल है वो सड़ने लगेगा, वो गलने लगेगा। उसको अगर आप देखेंगे हाथ से निकाल दीजिएगा, उसको फल वहीं रहेगा, वो आसानी से निकल जाता है। उसको अगर आप खोलेंगे उसके अंदर कीड़ा लगा, एक सूढ़ी होगी, उस सूढ़ी को आप अलग से निकाल करके पाँव से मसल सकते हैं या किसी दवाई में डाल सकते हैं। तो ये जो है फल मक्खी के लिए बहुत कारगर और सही उपाय है। दवाई का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा और बहुत फायदा आपको किसान भाइयों को मिलेगा। इसको आप गौर करेंगे तो कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई। आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिकों से, उद्यान विशेषज्ञों से, सब्जी विशेषज्ञों से मिले और उस पर उद्यान हमारे जो केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपका कृषि रसायन इकाई केंद्र हैं, हॉर्टिकल्चर के उद्यान के हमारे सचल दत्त केंद्र हैं, वहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आपने सुनी पूर्व प्रसारित वार्ता डॉक्टर एस पी सिंह से बरसात में सब्जी वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर। चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

साथियों, नर्सरी में हम अगर किसी भी किस्म के पौधे या फल उगाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा अपेक्षाकृत अधिक ही होता है। ऐसे में हमें नर्सरी में लगाए फसल का थोड़ा अधिक फ़ायदा मिले तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें भूमि अच्छी निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर ये उपजाऊ दोमट मिट्टी हो वहीं पर हमें अपनी नर्सरी लगानी चाहिए। जहाँ पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए। स्थानीय मांग और जलवायु को देखते हुए भी और साथ ही प्रमाणित और स्वस्थ पौधों का चयन करें जिससे आगे की पैदावार भी शानदार हो। नर्सरी की जो संरचना है वो भी हमें मौसम को देखते हुए करनी चाहिए। जैसे बेमौसम फल रख रहे हैं तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस और गर्मियों में तेज़ धूप से बचने के लिए शेड या नेट हाउस का भी उपयोग करें तो बेहतर ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी मृदा का परीक्षण वक्त वक्त पर कराते रहेंगे तो हमें फ़ायदा भी बहुत अधिक होने वाला है। चलिए साथ ही कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सभी आप अपनी पसंद का लोकगीत या रागनी रेडियो पर सुनना चाहते हैं तो हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 10 जुलाई को दोपहर 1:30 से 2 बजे तक की जाएगी। आप अपनी पसंद के लोकगीत एवं रागनियों को अपने इस फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में सुन सकते हैं। तो उठाइए अपना पेन या फ़ोन, हमारा नंबर नोट करें 7088001382। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7088001382। हमें कॉल करना ना

शुक्रवार 1:30 बजे से 2 बजे तक। साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 2480001। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:25 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: culture, and various educational aspects as well. So these are the main outcomes, but those are very specific. Broadly, I think this visit means a lot because we are meeting face to face with each other, traveling so many distance to meet your friends here in New Zealand. So I think it's a very promising future that we have with New Zealand.
1: Yeah, as you said, this is a relationship with immense potential and a promising future. Thank you so much, ma'am, for speaking with us. We hope this historic visit further strengthens the friendship and cooperation between India and New Zealand. Thank you.
2: You were listening to an exclusive interview with Muanpui Sai Oi, High Commissioner of India to New Zealand, on the upcoming visit of Prime Minister to New Zealand. The interviewer was Manju Meena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:35 हो रहे हैं और अब वक्त है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों दगड़ मीछू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार, उत्तराखंड देशक छठू पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, साक्षरता दर 98.7% पूजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करी। जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियान अंतर्गत दूरस्थ गांव तलक पूजो शासन प्रशासन, ठुल संख्या में लोगन के मिल रो सरकारी योजनाओं फैद। और प्रदेशक 7 जिलों में ऊनी वाल 24 घंटन में भारी है भारी उद्योग रेड अलर्ट। जिलाधिकारी भोल हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रन में घोषित करी अवकाश। अब समाचार विस्तारल, उत्तराखंडल शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्ण साक्षर राज्यक दर्जा प्राप्त कर हेलो। केंद्र सरकारक उल्लास कार्यक्रमक अंतर्गत राज्यल 98.7% साक्षरता दर हासिल करबे यह उपलब्धि प्राप्त करी छू। केंद्र सरकारल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण करणक बाद राज्यपालल उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करणक स्वीकृति प्रदान करी। यह है पहली गोवा त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करी गई छू। अब उत्तराखंड ले यो सूची मा शामिल है गो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील यके राज्यक लीजी ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहो कि यो सरकारक सतत प्रयासों और जन भागीदारी परिणाम छू। उन्हें कहो कि राज्य सरकार डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा और जीवन उपयोगी कौशल सभ्य नागरिकों तलक पुजुणु लीजी प्रतिबद्ध छू। शिक्षा मंत्री धनसे रावतल को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुरूपल सभ्य नागरिकन के गुणवत्तापूर्ण और आजीवन शिक्षा उपलब्ध करुणक लीजी राज्य सरकार लगातार काम करने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति 97वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिए समीक्षा करी। उन्हें बक्सर, पौड़ी, अलमाड़, रुद्रप्रयाग, पिथौरगढ़ और टिहरी जिलों में कम अनुपात पर रीस ले व्यक्त करते हुए नियमित रूपल शिविर लगुणक ले निर्देश दी। राज्यक आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्रक भूमिका के महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री बैंकों धे आम लोगों, किसानों, युवाओं, श्रेणियों और उद्यमियों तलक ऋणक पहुंच आसान बनून पर जोर दे।
5: बैंक राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था है, रोजगार है, वित्तीय समावेशन है और निवेश और उद्योग और राज्य का राजस्व, इन सभी की वृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और मैं कहूँ कि हर विकास की दृष्टि में योगदान होता है। हमारे राज्य के अंदर बैंकों के सहयोग से काफ़ी सारे MSME सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, होम स्टे के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और कुछ जनपदों में जरूर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा है कि वहाँ पर रोजगार का सृजन हो, महिलाओं को प्राथमिकता पर रख के काम हो, उनको ऋण उपलब्ध आसानी से हो जाए, केवल दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण से वो किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहें और हमारी प्राथमिकता है कि हमारी मातृशक्ति महिलाएं हमारी आगे आएं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें, स्टार्टअप है, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए कहा है और बैंक भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करेंगे।
4: उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कुसुम कंडवालल पौड़ी जिला कोटद्वार स्थित नारी पुनर्वास केंद्रक औचक निरीक्षण कर वाक व्यवस्थाओं का जायजा ले। यो दौरान उन्हें व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहो कि पुनर्वास केंद्र श्रेणियन के सुरक्षित वातावरण दगर आत्मनिर्भर बनुनक ले अवसर उपलब्ध करुनो। उन्हें बताया कि केंद्र है पहली आश्रित रही एक मेधावी चेली वर्तमान मा बीटेक पर की पढ़ाई करने जो केंद्रक सकारात्मक प्रयासों का उदाहरण छू। अध्यक्ष केंद्र में रूणीवास श्रेणियों और चेलियन दगड़ बातचीत ले करी और संबंधित अधिकारियों के श्रेणियों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दी। हरिद्वार जिला प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग पुरकाजी लक्सर हरिद्वार चौरीकरण और निर्माण कामन के गति देने के लिए हरिद्वार और लक्सर तहसील 23 प्रभावित गांव में भूमि संबंधी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगे हैली। जारी आदेशक अनुसार यो गांव में अब कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में परिवर्तन भूमि खरीद परोक्त रजिस्ट्री बेनाम और भूमि प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगाई गई छू।
6: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
4: जन जनक सरकार जन जनक द्वार अभियानक अंतर्गत प्रदेशक विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर जन जागरूकता कार्यक्रम और विकास प्रदर्शनी व्यापक आयोजन करी जा रो। यो शिविरों के माध्यम दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तलक शासन प्रशासन सिद्ध पहुंच सुनिश्चित कर बेर हजारों नागरिकन के विभिन्न विभागों जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं फैद दी जनो। एक रिपोर्ट।
6: प्रदेश भर में है शिवरूम बटी मिली जन समस्याओं और शिकायतों को बहुत संख्या में मौके पर निस्तारण करी जा रहा, जबकि बाग बची मामलों बखत पर निस्तारण कार्रवाई करी जा रहे। यू शिवरूम आज तक 5,300 हबे ज्यादा नागरिकों भाग लियो, जबकि 4,470 हबे ज्यादा पात्र लाभार्थियों के विभिन्न विभागों जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को लाभ दी गो। शिवरूम मिली 415 शिकायतों बटी 180 हबे ज्यादा मामलों मौके पर निस्तारण करी गो, जबकि बाग बची मामलों बखत पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के प्रेषित करी जा रो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील एक बयान में कहो कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर मैच तक सुशासन और जन सेवा पहुंच सुनिश्चित करण छू। उन्होंने कहो कि जन सेवा शिविरों के माध्यम दूरस्थ क्षेत्रों में रुण वाले नागरिकों के एक जाग पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही। जेल महसूस बखत श्रम और डबल बचरी और समस्याओं के लिए जल्दी समाधान है जा रो। उन्होंने कहो कि हर पात्र नागरिक तक योजनाओं लाभ पुजान सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता छू। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बटी योगिता बिष्ट।
4: मौसम विभागल ऊनी वाल कुछ दिनन तलक प्रदेशक विभिन्न जिलों में भारी द्योग चेतावनी दी रखी। विभागल ऊनी वाल 24 घंटों के दौरान देहरादून टिहरी पौड़ी हरिद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल और चंपावत जिलों में कै कै भारी है बहुत भारी द्योग रेड अलर्ट जारी करो। यके देखते हुए आज राज्य कुछ जिलों में सब स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रही। यो बीच राजधानी देहरादून दगड़ प्रदेशक अधिकांश जिलों में रुक रुक बेर द्यो हुनो और भूस्खलन है पर्वतीय जिलों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात ले प्रभावित भो। वहीं आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमनल संबंधित विभागों के कोई ले संभावित आपदा है प्रभावी ढंगर निपटूणक लीजी 24 घंट सतर्कता बरतूणक निर्देश ले दी छन। उन्हन प्रदेशवासियों ने मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों गंभीरता है पालन करनक ले अपील करी। अल्ले अल्ले जिलाधिकारी देहरादूनल 10 जुलाई भोल हुले स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रन मा अवकाश घोषित करो। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुहर जत्थ आज पिथौरगढ़ पूजन पर जिला प्रशासनल पारंपरिक ढंगल स्वागत करो। जत्थमा देशक विभिन्न राज्यों के 47 श्रद्धालु शामिल छन। यह अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनील को कि भोल हूँ यो दल आवश्यक औपचारिकता पूर करवेर गुंजी लीजी रवाना होल।
7: इस दल में कुल 47 यात्री हैं जो कि भारत के 12 राज्यों से सम्मिलित हैं और सभी यात्रियों का जो आज जिला प्रशासन द्वारा यहां स्वागत किया गया है केएमबीएन माँ उल्का देवी में। ये यात्री यहां से धारचूला के लिए रवाना होंगे और उसके बाद जो है आगे कल गुंजी के लिए रवाना होते हुए लिपु लेक दर्रा क्रॉस करके तिब्बत में प्रवेश करेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर जो है अगले 10 दिन के अंदर वापिस यहाँ पर पहुंचेंगे।
4: वहीं श्रद्धालुअन यात्रा के दौरान उन्हें के दी

0: रही सुविधा और सुरक्षा लीजिए केंद्र और राज्य सरकार सराहना करी।
1: ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइव स्टार होटल में आ रहे, कोई चीजों की कमी नहीं रखी, टॉप नॉच सारी चीजें, बहुत ही सुविधा पूर्वक हमें यात्रा करवाई जा रही है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो कहीं पे भी नहीं होती। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हूं मेहसाणा गुजरात से, बट मैं रहता मेलबर्न में हूँ। मैंने वहां से अप्लाई किया था और महादेव का बुलावा आ गया, तो मैं वहां से फिर यहाँ पे आ गया अभी यात्रा के लिए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। उत्तराखंड देशक छठू पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, साक्षरता दर 98.7% पूजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति बैठक में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करी। जन जन की सरकार जन जनक द्वार अभियान अंतर्गत दूरस्थ गांव तलक पूजो शासन प्रशासन, ठुल संख्या में लोगन के मिल रो सरकारी योजनाओं के फैद और प्रदेशक 7 जिलों में ऊनी वाल 24 घंटों के दौरान भारी है भारी द्योग रेड अलर्ट और जिलाधिकारी देहरादूनल भोल हूं आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलन मां घोषित करो अवकाश। ये कदगढ़ कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों योंक यही समाप्त हूं। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आरएनए देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं योशिता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के ग्राम बसेट के एक ऐसे युवा से जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल महानगरों में ही नहीं बल्कि गांव की मिट्टी में भी मिल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा किसान दीपक कनवाल की। आपको बता दें कि दीपक दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और लुधियाना जैसे शहरों में नौकरी करते थे, जिन्होंने मेट्रो सिटी का जीवन छोड़कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। और उन्होंने करीब 10-12 वर्ष पहले अपने गांव लौटकर खेती को अपनाया और आधुनिक तकनीकों से सब्जी उत्पादन को अपना व्यवसाय बनाया।

0: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन कुछ युवा इस सोच को बदल रहे हैं। दीपक कनवाल भी ऐसे ही युवाओं में शामिल हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि आधुनिक कृषि तकनीकों का सही उपयोग किया जाए तो गांव में रहकर भी सम्मानजनक आय अर्जित की जा सकती है। दीपक ने अपने खेतों में मौसमी और उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। उन्होंने खेती को केवल पारंपरिक तरीके तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नई तकनीकों, बेहतर बीजों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया और आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। आज यह सब्जी उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हुए सालाना करीब 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कनवाल ने बताया कि शहरों में नौकरी करने के दौरान परिवार और गांव से दूरी बनी रहती थी, ऐसे में उन्होंने घर लौटकर खेती करने का निर्णय लिया। वर्तमान में वह कद्दू वर्गीय सब्जियों, शिमला मिर्च, बैंगन समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती से न सिर्फ केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि घर पर रहकर घर वालों की देखभाल भी कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही बुजुर्ग पिता की सेवा भी करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग से समय समय पर मिले सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन का उन्हें काफी लाभ मिला है, जिसके कारण वह खेती के माध्यम से लगातार बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। अब वह बाजार में अधिक मांग वाली अन्य सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
1: घर पे ही मतलब 10-12 साल से घर पे हूँ और ये सब्जी का स्टार्ट किया हूँ। घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि मतलब घर पे अकेले, पापा भी बूढ़े हो चुके हैं थोड़ा, और खेत मतलब जोतने का एक चीज़ का काफ़ी दिक्कत था। तो इसी वजह से मैंने फिर धीरे धीरे एक दो खेत करके ये सब्जी का उत्पादन का स्टार्ट किया। अभी होते होते काफ़ी मतलब खेतों में लगा चुका हूँ।
0: वहीं उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि प्रगतिशील किसान दीपक कनवाल कई वर्षों से सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं। सीमित भूमि होने के बावजूद वह बेहतर उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक जैसे किसान अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है और जो खेती को स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बना सकते हैं।
2: सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, आज हमने सब्जी प्रक्षेत्र का भ्रमण किया जिसमें कि इनके द्वारा शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू वर्गी, अन्य काफी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इनके द्वारा मल्चिंग शीट में ये सभी सब्जियां उगाई जा रही हैं, जो कि विभाग द्वारा इन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इन्हें सब्जी बीज, कीट व्याधि नाशक, औद्यानिक यंत्र, एंटी हेलमेट और काफी अन्य जो औद्यानिक निवेश है उपलब्ध कराए गए हैं।
0: दीपक कनवाल का कहना है कि गांव की जमीन केवल खेती का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मजबूत आधार है। उनका मानना है कि यदि युवा खेती को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन काफी हद तक कम हो सकता है। दीपक की सफलता से आसपास के गांवों के कई युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। वे उनसे खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेते हैं और अपने खेतों में नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह दीपक केवल एक सफल किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। उत्तराखंड सरकार और कृषि विभाग भी समय समय पर किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। यदि युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक खेती को अपनाएं तो खेती लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। दीपक कनवाल का उदाहरण इसी दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी कृषि की ताकत को पहचाने, आधुनिक सोच, नई तकनीक और दृढ़ संकल्प के साथ खेती को अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है बल्कि गांवों को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। बागेश्वर के ग्राम बसेठ के दीपक कनवाल ने अपने कार्यों से यह संदेश दिया कि सपने पूरा करने के लिए स्थान नहीं बल्कि मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत की आवश्यकता है। उनका यह प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये थी दीपक कनवाल की प्रेरणादायी कहानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए उम्मीद और प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश करते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हिमालय की चोटियां, निर्मल नदियां और प्राकृतिक सौंदर्य देश दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन अब उत्तराखंड एक और वजह से चर्चा में है। पहली बार राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। यह उपलब्धि न केवल मत्स्य पालकों के लिए गर्व का विषय है बल्कि पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के लिए भी एक नया अध्याय है। आइए जानते हैं कैसे उत्तराखंड की मछलियां अब विदेशी बाजारों तक पहुंच रही हैं और इससे किसानों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में मत्स्य पालन को एक व्यवसाय के रूप में तेजी से बढ़ावा मिला है। राज्य में उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक नेपाल निर्यात किया गया। सरकार का कहना है कि इससे मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी और उत्तराखंड के ट्राउट मछली को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पिथौरागढ़ की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की ओर से उत्पादित ट्राउट मछली को पहले गुजरात वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को करीब 23,50,000 रुपए की आय हुई है। विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में उत्तराखंड की ट्राउट मछली पहुंचाने की तैयारी कर रही है। विभागीय मंत्री का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। राज्य में मत्स्य पालकों की संख्या बढ़ी है, उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हजारों लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले हैं।
3: उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को पहली बार विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। ये पहली बार उत्तराखंड जब से बना है ये अचीवमेंट हमको मिला है। आपके यूरोपियन मार्केट्स और आपके यूएई के मार्केट्स में जो ट्राउट की फिश का वेट होता है वो हमारे यहाँ की ट्राउट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उनको फिले बनाने में आसानी होती है। तो हमने उस पर काम किया अगले 4 से 5 महीनों में, और उसी के साथ साथ पहला कंसाइनमेंट हमारा 5 टन का हमने एक इंटरनेशनल मार्केट को भेजा, जिससे कि हमारे लगभग 23,50,000 रुपए हमारे 33 फार्मर्स को उसका फायदा पहुंचा है। ये 3 मत्स्य समितियां हैं जिनके माध्यम से हमने ये करा है।
0: आज उत्तराखंड में ट्राउट

0: उत्तराखंड की इस उपलब्धि से यह संदेश मिलता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांवों के पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह सफलता और नई ऊंचाइयों को छुएगी तथा देवभूमि के हजारों परिवारों के जीवन में समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्यन देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत दीर्घ आयु के लिए आयुर्वेद विषय पर डॉक्टर गरिमा शर्मा से संकल्प मिश्रा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं, और इनसे हमारी बातचीत का विषय है दीर्घायु के लिए आयुर्वेद। सबसे पहले तो डॉक्टर गरिमा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: डॉक्टर गरिमा, हम आयुर्वेद की बात पहले से भी बहुत करते आए हैं। भारत में ये कहा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, अगर आप समाज के किसी भी वर्ग से इसके बारे में बात करें। जब हम दीर्घायु की बात करते हैं, जब हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब हम अपने जन्मदिन पर अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो हमें दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आयुर्वेद का जो आयुर्वेद की जो भूमिका है, वो इसमें कैसे योगदान दे सकती है, थोड़ा सा सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: आयुर्वेद की जो भूमिका है हमारी लॉन्गेविटी में, हमारी जो आयु है वो दीर्घ हो, उसमें हम बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो हम अपनी दिनचर्या और रात्रिचर्या, जैसे कि उसमें हम क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो ये चिकित्सा से पहले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारी पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं और हमारा पूरा जो रात है वो उसमें हम सो रहे हैं या हम उसमें भी रात्रि जागरण ही कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ तो यही है कि हम अपना जो डेली रूटीन है वो उसको तरीके से, जो आयुर्वेद में हमें एक स्वस्थ्रित एक उसमें पार्ट है जिसमें बताया गया है कि हमें कैसे इसको फॉलो करना चाहिए।
2: तो सबसे पहले आपने दिनचर्या की ही बात की। हम इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी दिनचर्या रखें जिससे हमें दीर्घायु प्राप्त हो। क्या कहा गया है आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में, अगर हम आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें, जहां लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लगातार दिन भर कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता है, कई जगह कई कार्यक्षेत्र में एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता है लोगों को, ऐसे में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं अगर आयुर्वेद के लिहाज से बात की जाए तो?
3: देखिए, सबसे पहले तो समय पे उठना वो बहुत ज़रूरी है। लोग अब हम कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अब ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम ही 4 से 6 है, लेकिन अगर हम ओवरनाइट कुछ काम कर रहे हैं, आईटी वाले तो ओवरनाइट भी करते हैं, अब वो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे? ठीक है कि अगर हम आयुर्वेद को फॉलो भी कर रहे हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि अगर उन्होंने ओवरनाइट अगर काम करा है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो सुबह उठ पाएँ। लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि दिन में अगर सोते हैं वो भी आयुर्वेद में रिकमेंडेड नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारियाँ पनपती हैं। इसलिए ही हमें सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि सुबह उठें, तो उससे ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि खान पान, लोग अब रात को उठते हैं तो रात को भी, आप आजकल सब ऑनलाइन हैं तो रात को ऑर्डर कर रहे हैं, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसी वजह से हमारे और जो रोग हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक आपका रात्रि जागरण हो गया, फिर आप रात्रि में जग के फिर आप खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से आजकल जो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है।

0: एंड लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है।
1: आपने मेटाबॉलिज्म की बात की। आयुर्वेद में जो आदर्श खान पान का तरीका है वो अगर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहें, सुबह से मोटे तौर
0: हाँ
1: पे रात तक किस तरह का खान पान होना चाहिए, उसके बारे में बताइए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म या पाचन तंत्र ज़्यादा मज़बूत रहे, और एक मज़बूत पाचन तंत्र एक लंबी आयु के लिए तो ज़रूरी है ही।
0: बिल्कुल। तो खाना तो हमें जैसे बताया गया है कि तीनों टाइम, जो तीनों के अंकाल हैं, सुबह का अंकाल, दिन का अंकाल और शाम का अंकाल, तीनों टाइम हमें खाना खाना चाहिए और एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि शाम को हमें हल्का और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, जो हमें संध्या के समय कर लेना चाहिए। लगभग 7 बजे तक हमें अपना खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसको पचने के लिए भी हमें 2 से 3 घंटे चाहिए। तो अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, 9, 9:30, 10 बजे, तो हमें 7, 7:30 बजे तक अपना भोजन कर लेना चाहिए। अब खाना क्या चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट जैसे मैंने बोली, तो आजकल जैसे बड़ा प्रचलन है कि प्रोटीन डाइट ही खाना चाहिए, कि उससे हमें पाचन सही रहता है, भूख नहीं लगती है, एंड मल्टी विटामिन हमें बहुत मिलते हैं। लोग आजकल अवॉइड करते हैं और सब कुछ खाना, रेदर देन टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो जैसे सुबह का आहार है, उसमें आप लाइक पोहा, इस तरह का, जैसे सीजनल भी अलग अलग है, जैसे सीजन है या आपकी प्रकृति है, सब इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। हर इंसान एक अलग ही, जिसके जब सबके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उन्हें अलग अलग प्रकृति दी है, तो वो उसी तरह से ही बॉर्न हुआ है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन आप जो सीजनल सब्जियां हैं जो हमें लोकल मिलती हैं और सीजन के अनुसार, वो ही खाएं। जैसे कि अभी गर्मियां हैं, तो गर्मियों में जो लौकी है, तूरी है, टिंडे हैं, परवल हैं, इस तरह की ही सब्जियां लें। दालें जो हैं हल्की लें, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मोटी दालें आपकी वैसे ही नहीं पचेंगी। तो वो इस तरह से फ्रूट्स भी आप जो है जो सीजनल है वो ही खाएं। और अगर ये जो सीजनल चीज़ें वो भी नहीं पचती हैं, तो फिर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं।
1: आपने सीजनल खान पान के तौर तरीकों के बारे में बात की। अब हम इससे आ जाते हैं, बहुत सी साल भर अब सीजनल बीमारियां भी लोगों को देखने को मिलती है, खांसी सर्दी जुकाम हो गया, या फिर हम बात करें तो कई बार हमें मजबूरी में बाहर का खाना खाना पड़ता है, कई बार डायरिया के भी केसेस सुनने को मिलते हैं, और इस तरह की कई सीजनल बीमारियां हैं।
0: बिल्कुल
1: उनमें आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति क्या है, कैसी है, एक आयुर्वेदाचार्य के पास जाने के बाद हम किस तरह का उनका अप्रोच रहता है इन सीजनल बीमारियों के इलाज के लिए?
0: देखिए, इसके लिए हमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी मैं कहूँगी कि बचपन से ही स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जो पेरेंट्स हैं, ये वैसे उन्हीं के लिए हैं कि बचपन से ही आप अपने बच्चे को ये आदत डालें कि वो एक अच्छा खाना खाएं, जो बाहर का खाना जो है मैक्सिमम अवॉइड करें, जो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं और आपके फ्रूट्स हैं, है ना, और दाल रोटी सब्जी ये सब खाएं। और इससे ही इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग होती चली जाती है धीरे धीरे। अब अगर हमारा बच्चा ही बोलता है कि हमें ये नहीं खाना है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो बच्चा कह रहा है वो ही उन्हें दिया जाए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग जो है बचपन से ही होनी शुरू होती है। लेकिन चलिए कि अगर हम मानते हैं कि अभी आप सीजनल बोल रहे हैं कि बच्चों को भी एकदम से हो जाता है सीजनल प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए आयुर्वेद में हम स्वर्ण प्राशन संस्कार भी करते हैं, जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। पहले के ज़माने में हमारे वैक्सीनेशंस नहीं होते थे, तो स्वर्ण प्राशन संस्कार एक वैक्सीनेशन का ही काम करता था। उसमें स्वर्ण है, जो स्वर्ण जो है वो त्रिदोष शामक है और एक बहुत ही स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर है। तो उसको हम हर महीने देते हैं पुष्य नक्षत्र में। तो ये तो बच्चों के लिए है, और बड़ों के लिए भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, जिससे कि वो उनको रिएकरेंस ना हो प्रॉब्लम्स में। बाकी सीजनल जो है उसके लिए हम लोग कुछ खाना बोलते हैं कि आप दही मत खाइए अगर आपको खांसी है, या जैसे लोग अदरक बहुत खाते हैं, लेकिन अदरक लोग सोचते हैं खांसी में खाना है, लेकिन जैसे गर्मी है, गर्मी में वो गर्म रहेगा अदरक, तो वो अवॉइड करना है। लोग काली मिर्च बहुत खाते हैं, जैसे वो कोविड में भी लोगों ने बहुत काली वो काढ़े बहुत पिए, तो उसकी जो प्रॉपर डोजेज है वो आप चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही करें। अपने आप जो यूट्यूबर्स हैं या आपके सोशल मीडिया में, उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सबकी प्रकृति अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सबकी बॉडी अलग
1: निश्चित
0: है।
1: ही आपने जैसा बताया, घर पे आयुर्वेद से जुड़े बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें, या काली मिर्च की बात करें, लेकिन इनकी नियत डोज लेना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: कुछ थोड़ा उदाहरण की से बताएं, अगर इनकी गलत डोज हम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, खासकर हल्दी या अदरक की बात कही, तो नुकसान क्या हो सकता है शरीर को, जो हमारे श्रोताओं को जानना ज़रूरी है।
0: हाँ, तो देखिए जैसे अदरक है, वो उसकी पोटेंसी बहुत गर्म है, वो जो अगर आप खाते हैं उसको बहुत ज़्यादा, तो लोगों में आप देखते हैं जैसे एसिडिटी बहुत होती है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको, अदरक तो उन्होंने चाय में पीना ही है, तो उस टाइम तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, लेकिन उसके जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ही समझ लीजिए उसको, कि अदरक से एसिडिटी बहुत होती है। ठीक है, तो एक तो ये है। हल्दी का भी, हल्दी इज़ वेरी गुड, उसको हमने कोविड में भी बताया कि दूध में डाल के आप हल्दी पका के लें, लेकिन हल्दी की क्वांटिटी एक चुटकी, अब जैसे गर्मी है तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के लीजिए, अगर किसी की बॉडी एक है, स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, तो उसमें आप एक चुटकी सौंठ का पाउडर भी डाल के ले सकते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के चम्मच, आधा चम्मच, 1/4 डाल रहे हैं, और उसको एक मतलब पूरा जो जो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं वो गलत हो जाता है बॉडी के लिए। तो इसलिए जो भी अब आयुर्वेद जो है इसी तरह से गलत दिशा में इसलिए जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इसके ये इस टाइप से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये वो है, क्योंकि वो प्रॉपर डोज में नहीं लिया जा रहा है, तो इसीलिए एक जो चिकित्सक के अनुसार ही लें, सलाह के अनुसार, तो ज़्यादा अच्छा है।
1: आजकल आयुर्वेद में एक चिकित्सा पद्धति है जहाँ पर पेन मैनेजमेंट की बात की जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो क्रोनिक पेन है, क्या इसका भी इलाज संभव होता है? क्या इमीडिएट, मान लीजिए किसी को मोच आ गई है या फिर और दूसरे तरह के दर्द हैं, किन केसेस में आयुर्वेद में पेन मैनेजमेंट की बात की जाती है और इसका तरीका क्या है, थोड़ा इसके बारे में श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए, अगर किसी को, सपोज हम लेके चलते हैं कि किसी को अर्थराइटिस है, वो बहुत क्रॉनिक है, तो उसको पेन है कहीं जॉइंट्स में, तो उसके लिए इंटरनली जो शोधन चिकित्सा है वो तो पंचकर्म से ही है, या हम शमन चिकित्सा जो दवाइयों से करते हैं, लेकिन उसका जो टाइम है, थोड़ा उसको टाइम लगता है ठीक होने में, ये तो हम सब लोग ही मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी एक प्रक्रिया है, जिसमें अग्निकर्म आता है, विद्ध कर्म आता है, और एक आता है मर्म चिकित्सा। तो इससे इसे जो है इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में रखा गया है, जिससे हम टेम्प्रेरी रिलीफ लेते हैं, ये एक परमानेंट रिलीफ का तरीका नहीं है, इससे हम सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ, कि उस टाइम आपको पेन है तो 3-4 सिटिंग्स में आपको पेन रिलीफ हो जाएगा, इट्स अ सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसे कहते हैं, लक्षणों में सुधार आ जाएगा, लेकिन जो अंदर से आपको डिटॉक्स कर रहा है बॉडी को, अंदर से जो शोधन हो रहा है जिससे कि वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए, उसके लिए तो हमें पंचकर्म ही कराना पड़ेगा या दवाइयों से चिकित्सा लेनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे हमने बताया कि अग्निकर्म है, तो अग्निकर्म एक चिकित्सा है, और एक विद्ध कर्म है, वो भी एक चिकित्सा है, बहुत डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक मर्म चिकित्सा है, तो ये बहुत अच्छी चिकित्सा है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं।
1: आप चूंकि लंबे समय से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं,
0: जी
1: थोड़ा हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें, किस क्षेत्र में या किस खास बीमारियों के लिए हाल फिलहाल में आयुर्वेद सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, जहाँ पर श्रोताओं को अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो आयुर्वेदाचार्य से ज़रूर मिलना चाहिए। और क्योंकि आयुर्वेद के बारे में कुछ खास बातें आम तौर पर प्रचलित हैं कि शरीर पर इसका दुष्प्रभाव बहुत कम होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
0: हाँ, देखिए, आप रिसर्च तो हो ही रही है, सभी डिजीज में हो रही है रिसर्च, अब जैसे कैंसर है उसमें भी हो रही है, कैंसर में भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज में, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को हम लोग प्रमेह कहते हैं, डायबिटीज़ तो एक पार्ट है उसका, तो प्रमेह में काफ़ी प्रकार आते हैं, उसमें एक डायबिटीज़ प्रकार आता है, तो उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है जिसके हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इवन मैं खुद ही करती हूँ चिकित्सा डायबिटीज़ की, थायराइड की जैसे है उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो किसी को क्रॉनिक थायराइड भी है तो हम उसको स्विच टू आयुर्वेदा, तो वो जैसे पूरी जिंदगी थायराइड की दवाई एलोपैथिक खा रहा है, तो वो आयुर्वेद की खाएगा, तो धीरे धीरे

0: उसको जो है फर्क लगने लग जाएगा और उसकी दवाई छूट भी सकती है अगर वो डाइट एंड लाइफस्टाइल भी फॉलो करें, क्योंकि अगर वो सिर्फ हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों पे डिपेंड रहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर द डिजीज। एंड कुछ लेवल्स भी होते हैं डिजीज के कि किस लेवल पे है वो, तो वो भी हमें देखना होता है कि हम ऐसे कमिट नहीं करते कि हाँ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसमें रिसर्च हुई है, जैसे पैनक्रेटाइटिस है, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आयुर्वेद में रिसर्च के। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी ऑनगोइंग है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है।
1: हमने दीर्घायु की बात की और दीर्घायु के लिए ऐसे संस्कार बचपन से ही अगर बच्चों में आ जाएं तो
0: बिल्कुल।
1: निश्चित ही हम स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। बच्चों में आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो हम बच्चों में क्या वो संस्कार डाल सकते हैं जो वो बड़े होने पर भी उसको अपने साथ लेकर के चल सकें और उनका जो वृद्ध जीवन है वो भी बहुत ही स्वस्थ गुजरे।
0: देखिए, स्वस्थ की एक परिभाषा है जो आयुर्वेद में बताई गई है। एक श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभि दीयते। तो स्वस्थ सम दोष, सम दोष मतलब हमारे वात पित्त कफ जो है वो सम रहने चाहिए। सम धातु, हमारी धातुएं होती हैं साथ जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये सब जैसे आप सुन रहे हैं, रस जो हमारा जितना भी रस है बॉडी में फ्लूड्स है, तो इस तरह से रक्त ब्लड इस टाइप से सारी धातुएं जो है हमारी सही वर्क करनी चाहिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सम दोष सम अग्नि सम धातु, जितनी भी धातुएं हैं तो हमारी अग्नि होती है जिससे भी हमारा पाचन होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, वो सही होना चाहिए। सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया, हमारा जो बॉडी से स्टूल जो है वो डेली, जैसे कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो हमें, मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं कि अब वो क्रॉनिक हो गया कॉन्स्टिपेशन, पूरे हमने ज़िंदगी ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए बच्चों में शुरू से ही ध्यान रखें कि उनका जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो डेली क्लियर होना ही चाहिए, है ना। तो सम दोष सम धातु सम अग्नि सम मल क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं जितने भी मूवमेंट्स हैं, है ना। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, आत्मा प्रसन्न होना, इंद्रिय जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो प्रसन्न होनी चाहिए, और मन। तो जैसे कि ड्रग्स वगैरह आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया है, ड्रग्स का प्रचलन, तो ये सब उनको अच्छा लगता है। अगर हम इसको उस साइड से लेके चलें तो उनको ये वर्ड उसको वहां पे भी वो कनेक्ट करें कि हाँ हमें अच्छा लग रही है वो चीज़। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को शुरू से ही गाइड करना चाहिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म में इनके दुष्प्रभाव ही होंगे, तो ये बच्चों को शुरू से ही सिखाएं। और आयुर्वेद पेरेंट्स जब शुरू से ही फॉलो करेंगे बच्चों को, वो शुरू से ही जो दवाएं दें, तो शुरू से, अभी क्या होता है कि हम शुरू में ही एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं तो जो बॉडी की रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो हम फिर उसके बाद आयुर्वेद देंगे तो इट विल टेक टाइम। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले जो फर्स्ट आयुर्वेद को ही फॉलो करें, तब आप एलोपैथ में जाएं अगर आपको आयुर्वेद से रिजल्ट नहीं आता है। तो पहला कदम आयुर्वेद, देन और सब।
1: आपने निश्चित ही इस श्लोक के माध्यम से एक लंबे और सुखी जीवन का सार दिया और हमारे श्रोता जो भी सुन रहे होंगे निश्चित ही बहुत कुछ जानने को मिला होगा उन्हें। आकाशवाणी से आपने बातचीत की इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत दीर्घ आयु के लिए आयुर्वेद विषय पर डॉक्टर गरिमा शर्मा से संकल्प मिश्रा की बातचीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गीत।

श्रोताओं, अभी सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। तो आइए सुनेंगे सुगम संगीत में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत RD बर्मन का है और बोल जावेद अख्तर के। फिल्म है सागर

शुभम फिल्म संगीत में ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और बोल है समीर के। फिल्म है आशिकी।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:40 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, समय को देखते हुए पेशे खिदमत है फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत फिल्म जुदाई से हरिहरन अलका याग्निक और जसपिंदर नैरोला की आवाज़ में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है समीर ने और संगीत बत किया है नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
4: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने और शाहिद कादरी के बोल हैं। फिल्म है बर्फी।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:40 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओ, सुनेंगे फिल्म संगीत में। अगला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, संगीत है प्रीतम का और गीत को बोल दिए हैं इरशाद कामिल ने। फिल्म है लव आजकल।

ये गीत सुन रहे थे सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज में, फिल्म हमको दीवाना कर गए से। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत, फिल्म बाईपास रोड से सरीब साबरी की आवाज में संगीत दिया है शारीब तोशी ने और बोल हैं कलीम शेख के।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:55 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, समय को देखते हुए पेश खिदमत है फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। मोहित चौहान, प्रिया सारिया और अर्पिता चक्रवर्ती, साथ ही तनिष्का सांघवी की आवाज़ में संगीत दिया है सचिन जिगर ने और फिल्म है हीरो

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग मियां मल्हार पर पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग मियां मल्हार पर पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुशाल। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और इस ठंडे ठंडे बरसात के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, साथ ही अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो जी हाँ श्रोताओं, ये वही कार्यक्रम है जिसमें सुनवाए जाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत आपके नाम और पतों के साथ। तो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और व्हाट्सएप कर दीजिए हमें आपके पसंदीदा गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर मैं कहा करती हूँ कि कुछ हमारे नियमित श्रोता हैं जो समय के साथ हमारे संग जुड़ चले होते हैं। तो चलिए सुनेंगे कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मारहड़ा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबीहा अंजुम खान। साथ ही हमारे साथ हमारे जो अगले श्रोता हैं, आप जुड़े हैं हमारे साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी, और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधान खुराना। साथ ही हमारे साथ हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। साथ ही खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे साथ हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। और साथ ही हमारे साथ हैं गांव हरुड़ी चांडिल झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मन मोहिनी महतो, दीन बंधु महतो। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं हम संग जुड़े हैं, ये हैं माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

0: श्रोता हमारे साथ हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेचा, पूनम गंगनेचा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अगले श्रोता आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, और जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, और साथ ही शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हमारे साथ हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भया गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। साथ ही हमारे हम बात करें हमारे अगले श्रोता की, तो आप हैं अर्जुन बर्मन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर आप जुड़े हैं हमारे साथ। अर्जुन जी आप हैं हमारे साथ रुड़की से, तो आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने, फिल्म है लव स्टोरी।
1: Ha ha ha!

जी हाँ श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर और रात्रि के 10:41 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का आपकी फरमाइश। जी हाँ श्रोताओं, ये वही कार्यक्रम है जिसमें सुनवाए जाते हैं आपको पसंदीदा गीत आपके नाम और पतों के साथ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुकशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत जिसके फरमाइश करता हमारे साथ हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान और मास्टर अजहर खान अजीम खान। साथ ही हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र से, हमारे साथ जुड़े हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। नवेद हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, रसीद वारसी, आप जुड़े हैं हमारे साथ मारहड़ा दरवाजा एटा से, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान और सबीहा अंजुम खान। देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं आप हैं राजेश्वरी सागर और आप अधिकारी निवास मिलन विहार GMS रोड देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। और साथ ही हमारे साथ हैं राजेश खन्ना चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना और बाहू राज खन्ना, अमित खन्ना अम्मी, आप जुड़े हैं हमारे साथ तेलंगाना से आप हमारे साथ हैं। और साथ ही हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा और नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर, प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा अन्नपूर्णा वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से।

श्रोताओं, फिल्म उत्सव के अभी ये गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में, ये बेहद ही खूबसूरत सा नगमा। और सुनेंगे कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोइफा खान। और साथ ही हमारे साथ हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्काक फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। और साथ ही हमारे साथ हैं हमारे अगले श्रोता शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से, कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े, लक्सर रोड सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से हैं मोहम्मद जारिफ, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोएब कहकशा और पूरा परिवार। जी हाँ श्रोता, जहाँ भी परिवार की बात आती है, अक्सर मैं ये बात कहा करती हूँ कि कोई भी काम जो हम परिवार के साथ मिलकर करते हैं तो उस काम को करने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। और अगर हम बात करें रेडियो पर अपने पसंदीदा गीत सुनने की तो उसके क्या ही कहने। तो जी हाँ श्रोताओं, वो सभी श्रोता जो हम संग जुड़ते हैं उनका तहे दिल शुक्रिया, लेकिन जो अपने परिवार के साथ हमें सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो आगे हमारे साथ जुड़े हैं आदर्श नगर मालोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराजा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हमारे साथ हैं, और शेरकोट बिजनौर से हमारे साथ हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बागी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, विष्णु अग्रवाल जी। और साथ ही हमारे जो अगले श्रोता हैं यहाँ पे गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर। तो श्रोताओं, सुनेंगे आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला बेहद ही खूबसूरत सा नगमा। आशा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

तो जी हाँ श्रोताओं, सुनेंगे कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ हैं गांव नथा ना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता, और साथ ही हैं सैयद मशहूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मार हड़ा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यसब अब्बासी, रसीद वारसी, किदवरी नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान और सबीहा अंजुम खान, और साथ ही हमारे साथ हमारे जो अगले श्रोता हैं प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर, साधना ठाकुर, मोना ठाकुर, बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई ठाकुर और ईसर राज पप्पू ठाकुर साथ में है जमशेदपुर कदमा से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गांव जाखोद राजस्थान से हमारे साथ है शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, और अजमेर शरीफ से हमारे साथ हैं सैयद आलम हासमी, गुलनाज सलमा नाज और असद अरहाम और मोहम्मद आलम हासमी, साथ ही जलालाबाद शामली यूपी से हमारे साथ है राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जिहान मंसूरी, और बात करें हमारे अगले श्रोता की तो आप हैं साइना, परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मशहूर अली, खाला पार, मुजफ्फरनगर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम मुरादाबाद जिला दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राज खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और

हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल और संजीव बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही हमारे साथ हमारे अगले श्रोता हैं, आप हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफजल अली नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

तो जी हाँ श्रोताओं, घड़ी की टिक टिक हमें इशारा कर चुकी है कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, इसी वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी आपके साथ आपकी फरमाइश के इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपनी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट सोनिया खुकशाल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक

0: और ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals."